अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आराधना चैनल। आइए अब सुनते हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

जी की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी की जय। श्री उमापति महादेव जी की जय। श्री रमापति रामचंद्र जी की जय। श्री वृंदावन कृष्ण बलदाऊ जी की जय। बोलो भाई सब।

ये आकाशवाणी का आराधना चैनल है। आइए सुनते हैं आकाशवाणी श्रीनगर के बालटाल और पहलगाम से अमरनाथ यात्रा पर विशेष प्रसारण।

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। शिवाना जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल एवं एफएम पहलगाम से। बालतल से आप हमें सुन पाते हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज़ के अलावा पहलगाम से आप हमें सुन पाते हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओ, प्रतिदिन आप तक ये विशेष प्रसारण पहुंचता है, कई माध्यमों से आप हमें सुन पाते हैं। डीटीएच की सर्विसेज, यूट्यूब की आकाशवाणी आराधना चैनल, वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म तथा न्यूज ऑन एआईआर की मोबाइल ऐप पर। इस विशेष प्रसारण के जरिए हमारी कोशिश रहती है कि अमरनाथ यात्रा से जुड़ी सभी सूचनाएं हम आप तक पहुंचा सकें। श्रोताओं, इस वर्ष 3 जुलाई को ये पवित्र यात्रा आरंभ हुई थी और 28 अगस्त श्रावण पूर्णिमा के दिन अपने समापन को पहुंचेगी। आइए भोलेनाथ को प्रणाम करते हैं।

श्यामाना जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़ के अलावा एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इसके अलावा आप हमें देश और विदेश से सुन रहे हैं डीटीएच की सर्विसेज, यूट्यूब की आकाशवाणी आराधना चैनल, न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। श्रोताओं, आज 19 अगस्त है और बम बम बोले के जयकारों से पूरी कश्मीर घाटी गूंज रही है। श्री अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। 3 जुलाई से आरंभ हुई ये पवित्र यात्रा अब श्रवण पूर्णिमा और रक्षाबंधन को संपन्न होने जा रही है। लाखों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त करके अपने घरों को लौट चुके हैं। श्रोताओं, क्या आपने कभी ये सोचा कि साल के 12 महीनों में इसी सावन के महीने में ये यात्रा क्यों होती है? जी श्रोताओं, सावन का महीना भोलेनाथ जी को बहुत प्यारा है, बहुत प्रिय है। पुराणों के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था तब उसमें से बेहद खतरनाक हलहल विष निकला था। पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया और सृष्टि को बचाने के लिए महादेव ने उस विष को अपने गले में धारण कर लिया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया और उन्हें नीलकंठ कहा गया। उस विष की गर्मी को कम करने के लिए सभी देवताओं ने शिवजी पर जल अर्पित किया था। सावन के महीने में होने वाली बारिश को शिवजी की उस शीतलता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इस महीने में जल अभिषेक का इतना बड़ा महत्व है। श्रोताओं, सावन सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि नेचर और हेल्थ के लिए भी एक रिन्यूअल का वक्त होता है। गर्मी के बाद जब बारिश होती है तो धरती नए रूप में निखर आती है। आयुर्वेद के हिसाब से भी इस मौसम में हल्का खाना और उपवास रखना और मेडिटेशन करना हमारे तन और मन को डिटॉक्स करता है और हमारी बॉडी के लिए बेस्ट माना जाता है। श्रोताओं, सावन का ये पावन महीना हमें सिखाता है कि बिना किसी स्वार्थ के सबकी भलाई करना और मन को शांत रखना। आप भी भोलेनाथ की भक्ति में डूब जाइए, किसी जरूरतमंद की मदद कीजिए और बोलिए बम बम भोले।

श्रोताओं, मान्यता ये भी है कि श्रवण पूर्णिमा के दिन ही भगवान शिव ने माता पार्वती को इस पवित्र गुफा में अमरता का ज्ञान दिया था, यानी अमर कथा सुनाई थी। कथा सुनते वक्त जब माता पार्वती को नींद आ गई तो दो कबूतर के बच्चे भी इस गुफा में मौजूद थे जिन्होंने ये कथा सुन ली थी और वो हमेशा के लिए अमर हो गए। कहा जाता है कि आज भी सावन के महीने में उन दोनों अमर प्राप्त कबूतरों को दर्शन प्राप्त करते हैं हमारे सभी तीर्थयात्री, जो पूरी लगन से मन से भगवान शिव के भक्त जब पवित्र गुफा जाते हैं कठिन चढ़ाई करके। तो कई ऐसे तीर्थयात्री भी होते हैं जिन्हें उन दो अमर कबूतरों का दर्शन भी होता है। श्रोताओं, श्रवण का महीना भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन का भी प्रतीक माना जाता है, इसलिए इस मौसम में शिवजी पर जल अर्पित करने से हर मनोकामना पूरी होती है।

महिमा बेहद अद्भुत है। जब महादेव जी ने माता पार्वती को सृष्टि का रहस्य सुनाने अब इस पवित्र गुफा ले गए तो उन्होंने शर्त रखी थी कि कोई भी तीसरा जीव इस रहस्य को ना सुन सके, इसलिए उन्होंने अपने साथ मौजूद हर चीज को रास्ते में त्याग दिया। पहलगाम में उन्होंने अपने नंदी को छोड़ा, चंदनवाड़ी में अपनी जटाओं से चंद्रमा को अलग किया, शेषनाग झील पर अपने गले के सर्पों को विसर्जित किया और पंचतरणी में अपने पांचों तत्वों को त्याग किया। इसका मतलब ये है कि जब हम अमरनाथ यात्रा पर जाते हैं तो हम भी अपने अहंकार, मोह और माया को पीछे छोड़कर एकदम पवित्र मन से भोलेनाथ के सामने जाते हैं और कहते हैं बम बम भोले।

श्रोताओं, पवित्र गुफा की सबसे बड़ी महिमा ये है कि यहाँ किसी इंसान के द्वारा कोई मूर्ति नहीं बनाई जाती। ये प्रकृति का एक ऐसा चमत्कार है जहाँ पवित्र गुफा की छत से पानी की बूंदें एक एक करके टपकती हैं और बर्फ के रूप में जमकर स्वयंभू पवित्र शिवलिंग का आकार ले लेती हैं। चंद्रमा की कलाओं के साथ साथ इस पवित्र शिवलिंग का आकार बढ़ता और घटता है, जो इस बात का प्रतीक है कि सृष्टि का चक्र कैसे काल और समय के साथ चलता है। इसमें पवित्र शिवलिंग के साथ साथ माता पार्वती और भगवान गणेश के भी बर्फ के छोटे प्रतीक रूप बन जाते हैं, जो इस स्थान की पवित्रता को और अद्भुत बना देते हैं। श्रोताओं, पवित्र गुफा की एक और सबसे बड़ी महिमा ये है कि ये जगह आत्मबोध यानी खुद को पहचानने का प्रतीक है। जब शिव जी इस गुफा के भीतर गए थे तो उन्होंने पूरी दुनिया से अलग होकर केवल सत्य का ज्ञान दिया था। इसी तरह जब कोई भक्त सभी सांसारिक चिंताओं को छोड़कर इस पवित्र गुफा में प्रवेश करता है और भोलेनाथ के पवित्र शिवलिंग के दर्शन करता है तो उसे एक ऐसी आत्मिक शांति और ऊर्जा का अनुभव होता है जिसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। कहते हैं कि जो भी भक्त सच्चे दिल से यहाँ आकर सर झुकाता है उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति और भोले बाबा का सदैव आशीर्वाद मिलता है। श्रोताओं, बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा की महिमा हर साल हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास के आगे सभी कठिनाइयाँ छोटी पड़ जाती हैं। आप भी घर बैठे दिल से एक बार प्रेम से कहें, जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी।

श्रोताओं, हर वर्ष लाखों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए कश्मीर घाटी आते हैं और ऊंचे पर्वतों के बीच कठिन रास्तों से होकर पवित्र गुफा तक पहुंचते हैं। श्रोताओं, अगर हम अपने प्राचीन ग्रंथों की बात करें तो अमरनाथ यात्रा का वर्णन महाभारत और पुराणों में मिलता है। कश्मीर के प्रसिद्ध इतिहासकार कल्हाना की शताब्दी पुस्तक राजतरंगिणी में भी इस पवित्र गुफा और यात्रा का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। उस काल में इस स्थान को अमरेश्वरा के नाम से जाना जाता था। लीलमठ पुराना और भृगु संहिता में भी ये बताया गया है कि महर्षि भृगु ने सबसे पहले इस पवित्र गुफा और पवित्र शिवलिंगम के दर्शन किए थे। यानी ये यात्रा हजारों साल पुरानी है और इसका संबंध हमारी सनातन संस्कृति से सीधा जुड़ा हुआ है। श्रोताओं, मध्यकाल में अत्यधिक बर्फबारी, कठिन मार्गों और बहुत सारी कठिनाइयों के कारण कुछ समय के लिए ये यात्रा बहुत कठिन हो गई थी, परंतु कालांतर में जब मार्ग पुनः सुगम हुए तो श्रद्धालुओं का आना जाना फिर से आरंभ हो गया। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार मध्यकाल के बाद जब भक्तों को इस गुफा का पुनः ध्यान आया, तब से अमरनाथ गुफा की यात्रा निरंतर चलती आ रही है। इस स्थान की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये किसी मानव द्वारा निर्मित मंदिर नहीं, बल्कि प्रकृति द्वारा निर्मित एक अलौकिक धाम है। श्रोताओं, समय के साथ साथ इस यात्रा का स्वरूप भी बदलता गया। प्राचीन काल में ये यात्रा बहुत कठिन होती थी, जहां श्रद्धालु महीनों पैदल चलकर पहुंचते थे, परंतु जैसे जैसे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती गई, सुरक्षा और सुविधाओं की आवश्यकता भी बढ़ी। इसके पश्चात वर्ष 2000 में श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की स्थापना हुई। इसके बाद से यात्रा को पूरी तरह व्यवस्थित किया गया। चिकित्सा सुविधाएं, आधुनिक मार्ग, यात्री निवास, सुरक्षा बल और हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराई गई, जिससे आज की यात्रा अत्यंत सुगम और सुरक्षित हो गई है।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़ के अलावा FM पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इसके अलावा देश विदेश से हमारे श्रोता हमें सुन पा रहे हैं YouTube की आकाशवाणी आराधना चैनल, वेव्स OTT प्लेटफॉर्म, TTH की सर्विसेज तथा न्यूज ऑन AIR की मोबाइल ऐप पर। श्रोताओं, प्रतिदिन ये विशेष प्रसारण आप तक पहुंचता है सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक। इस विशेष प्रसारण के जरिए हमारी कोशिश रहती है कि हम अमरनाथ यात्रा से जुड़ी सभी सूचनाएं, सभी जानकारियां आप तक पहुंचा सकें। श्रोताओं, इस वर्ष 3 जुलाई को ये यात्रा आरंभ हुई थी और लगभग 4,80,000 से ज़्यादा तीर्थयात्रियों ने भोले बाबा की पवित्र गुफा में जाके माथा टेका, पवित्र शिवलिंगम के दर्शन किए और अपनी मनोकामनाएं पूरी कराई। श्रोताओं, 9 अगस्त से ही प्रशासन ने यात्रा ट्रैक्स की मरम्मत की वजह से यात्रा को निलंबित कर दिया गया था, पर छड़ी मुबारक की यात्रा 22 अगस्त को अपने स्केड्यूल के हिसाब से चलेगी और 28 अगस्त को पवित्र गुफा पहुंचकर महाआरती, पूजा और विसर्जन के बाद ही इस यात्रा का समापन होगा।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़ के अलावा एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं 8 बजने वाले हैं, लिए चल रहे हैं हम आपको आकाशवाणी दिल्ली, जहां से आप समाचार सुनेंगे।

0: मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने घरेलू पाइपलाइन गैस कनेक्शन को घर घर पहुंचाने की प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 600 पुराने विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञ शामिल किए। झारखंड सरकार ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बीच अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी की। दिल्ली जल बोर्ड रिश्वत मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन और 5 अन्य गिरफ्तार। संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान पर मिसाइल हमले का आरोप लगाते हुए व्यापारिक और वित्तीय लेनदेन स्थगित किए। और नीदरलैंड्स में पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पाइप से रसोई गैस पीएनजी कनेक्शन घर घर पहुंचाने की प्रक्रिया तेज करने की प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दे दी है। इसका उद्देश्य स्वच्छ, सुरक्षित और सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराना है। ये योजना 1 सितंबर से 2 चरणों में लागू की जाएगी। एक रिपोर्ट।
4: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार योजना के माध्यम से मौजूदा पीएनजी कनेक्शनों को अपने रसोई घरों में पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल शुरू कर सकेंगे। वर्तमान में देश भर में करीब 1,74,00,000 घरेलू पीएनजी कनेक्शन है। मंत्रालय ने बताया कि योजना के अंतर्गत सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन CGD कंपनियों को बिना बिल वाले कनेक्शनों को सक्रिय करने और पीएनजी नेटवर्क का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। योजना के अंतर्गत CGD कंपनियों को प्रदर्शन अवधि के दौरान जोड़े गए हर अतिरिक्त घरेलू पीएनजी कनेक्शन के लिए 200 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर अतिरिक्त घरेलू स्तर पर उत्पादित कम कीमत वाली गैस आवंटित की जाएगी। आनंद और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
3: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने अपनी टीम में शामिल 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञ शामिल किए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि प्रश्न पत्रों की गहन पड़ताल के लिए 4-स्तरीय जांच प्रणाली लागू की जाएगी। NTA के कार्यालयों में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान तैनात किए जाएंगे। परीक्षा एजेंसी ने यह निर्णय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के निर्देश के बाद लिया है। इसमें परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए सभी उपाय करने को कहा गया था। झारखंड सरकार ने अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी कर दी है। इनमें वर्ष 2014 से झारखंड लोक सेवा आयोग और आउटसोर्स एजेंसी TSR डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड TDPL द्वारा आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं।
5: सरकार ने उन परीक्षाओं के परिणाम भी रद्द कर दिए हैं जिनकी प्रारंभिक प्रक्रिया TDPL द्वारा कराई गई थी। अधिसूचनाओं के अनुसार कथित अनियमितताओं को लेकर SIT की जांच और जारी CID जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर JSSC CGL परीक्षा रद्द की गई है। सरकार ने 6 परीक्षाओं को स्थगित करने और 17 परीक्षाओं की CID जांच कराने का भी फैसला लिया है। दोनों आयोगों में आंतरिक निगरानी प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा, जबकि वरिष्ठ IAS अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता वाली समिति परीक्षा प्रणाली में सुधार के सुझाव देगी। मैं विश्व रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
3: दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदित प्रकाश राय और 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को उन्नत बनाने की टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी के मामले में हुई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: सतर्कता निदेशालय की शिकायत पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान सामने आया कि निविदा प्रक्रिया में कथित तौर पर ऐसी तकनीकी विशिष्टताएं और शर्तें शामिल की गई थीं जो एक विशेष प्रौद्योगिकी प्रदाता के पक्ष में थीं। इससे प्रतिस्पर्धा सीमित हुई और एक चयनित निजी इकाई को अनुचित लाभ पहुँचा। जांच में यह भी सामने आया है कि निजी व्यक्ति कथित तौर पर कुछ सरकारी अधिकारियों और बिचौलियों के साथ संपर्क में थे। ताकि निविदा प्रक्रिया को प्रभावित किया जा सके। एसीबी के अनुसार इससे विशेष प्रौद्योगिकी प्रदाता के पक्ष में निविदा की शर्तों को प्रभावित करने के लिए निजी व्यक्तियों और सरकारी अधिकारियों के बीच कथित साठगांठ के संकेत मिलते हैं। जाँच में पूरे धन के लेन देन और कथित अपराध से अर्जित आय की भी जाँच की जा रही है। अनुपम और आनंद के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और जापान की प्रगाढ़ होती साझेदारी और उनके रणनीतिक महत्व पर बल दिया है। उन्होंने जापानी कंपनियों को भारत में निवेश और साझेदारी बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया है। श्री गोयल ने नई दिल्ली में जापानी प्रतिनिधिमंडल से कहा कि दोनों देशों के बीच एक मजबूत साझेदारी है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, प्रगति और समृद्धि की साझा आकांक्षाओं पर आधारित है। उन्होंने कहा कि यामानाशी प्रांत के प्रतिनिधियों की मौजूदगी ये दिखाती है कि इस साझेदारी का भारत के राज्यों और क्षेत्रों तक तेजी से विस्तार हो रहा है।
7: जापान के निवेशक और वहाँ पे नवाचार से जुड़े हुए लोग उत्तर प्रदेश के दौरे पे आए हैं। यामाची और उत्तर प्रदेश के बीच ये जो साझेदारी है, इससे बड़े पैमाने पे निवेश आएगा, ढेर सारे लोगों को रोजगार और व्यापार के अवसर मिलेंगे।
3: इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.8% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। हालांकि एजेंसी ने यह भी कहा है कि अलनीनो और भौगोलिक राजनीतिक चुनौतियों से आर्थिक रफ्तार धीमी पड़ सकती है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वित्त वर्ष 2026 में वृद्धि दर 7.6% रहने का अनुमान लगाया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने वित्त वर्ष 2025-26 में ऋण देने के मामले में जबरदस्त बढ़ोतरी की है। इस दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के प्राथमिक क्षेत्र ऋण फ्रेमवर्क के अंतर्गत इन बैंकों का प्रदर्शन मजबूत रहा। हालांकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कुल बकाया ऋण में 2024-25 के मुकाबले 10.3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो गत वित्त वर्ष में 5,78,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का था। गृहमंत्री अमित शाह तमिलनाडु के 2 दिन के दौरे पर आज शाम चेन्नई पहुंचेंगे। श्री शाह कल चेन्नई के पास कोवलम में दक्षिण भारत के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में तमिलनाडु, केरलम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री भाग लेंगे। पंजाब पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर मलेशिया से एक कुख्यात गिरोह के 3 आरोपियों को भारत लाने में सफलता हासिल की है। पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने बताया कि इन आरोपियों के पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से संबंध थे। हत्या, जबरन वसूली, विस्फोटक रखने तथा हाल में लुधियाना में हैंड ग्रेनेड विस्फोट की साजिश से जुड़े कई मामलों में इनकी तलाश थी। हरियाणा पुलिस ने पंजाब के एक परिवार और उसके सहयोगियों से जुड़े अंतर्राज्यीय बाल तस्कर गिरोह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरोह के सरगना परगट सिंह को पंजाब के मुक्तसर से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरोह ने अब तक देश भर में 50 नवजात बेचे हैं। बहादुरगढ़ के पुलिस उपायुक्त मयंक मिश्रा ने आकाशवाणी को बताया कि अब तक गिरोह से जुड़े 21 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज तड़के न्यू मार्केट इलाके में एक होटल में आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि होटल में आग से बचाव और अग्निशमन की व्यवस्था नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मानव जीवन की सार्थकता अन्य प्रणालियों के कल्याण और भलाई के लिए अनवरत काम करने में ही है। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम को साझा करते हुए उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपनी शारीरिक क्षमताओं, धन, बुद्धि और वाणी का इस्तेमाल परहित और कल्याणकारी कार्यों के लिए करना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर शर्मा प्रसिद्ध शिक्षाविद, कानूनविद और कुशल राजनेता थे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर पूर्वी हिस्सों, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश हो सकती है। उधर उत्तरी उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नदियों में उफान से 6 जिलों के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं और लगभग 10 लाख लोग प्रभावित हुए हैं।
8: भद्रक में भंडारी पोखरी और तिहिड़ी ब्लॉक सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से है, जहां बाढ़ का पानी गांव में घुस गया है और आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जाजपुर, केंद्रापड़ा, बालेश्वर, केओंझर और मरभज में भी बाढ़ जैसा हालत है। ब्राह्मणी और सालंदी नदियों का जलस्तर बढ़ने से संकट और गहरा हो गया है, जबकि अखुआपदा में बैतरणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में एहतियात के तौर पर कई स्कूल बंद रखे गए हैं। राज्य सरकार ने प्रभावित लोगों और किसानों के लिए 1,000 करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
3: संयुक्त अरब अमीरात ने इलाके में बढ़ते तनाव और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे को देखते हुए ईरान के साथ सभी प्रकार के व्यापारिक और वाणिज्यिक लेनदेन को स्थगित कर दिया है। अमीरात के विदेश मंत्रालय की संचार निदेशक अफरा अल हामिली ने बताया कि इस फैसले का उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता और वित्तीय व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाए रखना है। अमीरात ने यह घोषणा ईरान की ओर से खाड़ी में 2 बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के दागे जाने के बाद की। हालांकि अमीरात ने यह भी कहा कि वो शांति और स्थिरता के बीच बातचीत, सहयोग और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति संकल्पित है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
9: नीदरलैंड्स में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। दोनों टीमों के लिए अगले दौर में जगह बनाने के लिए ये मुकाबला महत्वपूर्ण है। भारत ने अब तक 2 मैचों से 3 अंक हासिल किए हैं और उसे अगले दौर में पहुंचने के लिए आज का मैच कम से कम ड्रॉ खेलना होगा। भारत ने वेल्स को हराया है और इंग्लैंड से हार का सामना करना पड़ा है। श्रीलंका में गोल क्रिकेट टेस्ट के 5वें और आखिरी दिन आज श्रीलंका की टीम अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट पर 84 रन से आगे खेलेगी। भारत ने श्रीलंका को 372 रन का लक्ष्य दिया है। श्रीलंका को जीत के लिए अभी 288 रन की जरूरत है, जबकि भारत श्रृंखला की जीत से केवल 6 विकेट दूर है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में कल नई दिल्ली में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार जीत दर्ज की। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन ने पहले दौर में ऑस्ट्रिया के कॉलिन फिलिमोन को हराया। वहीं त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है।
3: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
10: धन्यवाद फरहत। झारखंड में परीक्षा रद्द होने से 2000 से अधिक नौकरियां खतरे में, 6 में से 3 प्रदर्शनकारियों ने खत्म किया अनशन। जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। जंतर मंतर पर पुलिस सख्ती के आरोपियों की जांच, सर्वोच्च न्यायालय की उच्च स्तरीय समिति से कराए जाने का फैसला कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स ने दिल्ली पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से इनकार करने का भी समाचार दिया है। 2 अक्टूबर से बैंकिंग फॉर यूथ अभियान, दैनिक जागरण के आर्थिक पन्ने की खबर है। पत्र लिखता है, युवाओं को बैंकिंग सुविधा की जानकारी देने के लिए युवा कियोस्क और युवा बैंकिंग मित्र बनाएंगे सभी बैंक। 16 साल बाद भारत और पाकिस्तान आमने सामने, पुरुष हॉकी विश्व कप में शीर्ष 2 में जगह बनाने पर नजरें, अमर उजाला की सुर्खी है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पन्ने पर विश्वविद्यालयों में भारतीय ज्ञान पर शोध की प्रक्रिया शुरू होने पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, भारतीय ज्ञान परंपरा को मिली महत्ता। भारतीय ज्ञान की खोज हमें औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त कराने के लिए, विकसित भारत के लिए ज्ञान लोग गढ़ने वाली भी है। अंतरिक्ष में उगाई सरसों से बनाई सबसे स्वादिष्ट स्पेस डिश, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन और उनकी साथी जेसिका विट ने किया कारनामा। बीज और खेती की सामग्री पृथ्वी से पहले ही भेजी गई थी। राजस्थान पत्रिका ने आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर दुनिया के पुरस्कृत फोटोग्राफ को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। पत्र लिखता है, अंधेरे में शिकार को झपटने को तत्पर बार्न उल्लू। ये तस्वीर इंग्लैंड के नॉरफॉक की है और तस्वीर ली है विंस बर्टन ने। पत्र ने आइसलैंड में डेनियल विने गार्सिया द्वारा क्लिक की गई तस्वीर भी साझा की है, जो ज्वालामुखी से बहते गर्म लावा का विहंगम चित्र है।
3: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने घरेलू पाइपलाइन गैस कनेक्शन को घर घर पहुंचाने की प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 600 पुराने विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञ शामिल किए। झारखंड सरकार ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बीच अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी की। दिल्ली जल बोर्ड रिश्वत मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन और 5 अन्य गिरफ्तार। संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान पर मिसाइल हमले का आरोप लगाते हुए व्यापारिक और वित्तीय लेनदेन स्थगित किए। और नीदरलैंड्स में पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
11: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस: गवर्नमेंट अप्रूव्स इंसेंटिव स्कीम टू एक्सेलरेट डोमेस्टिक पीएनजी कनेक्शंस। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी रिवैम्प्स इट्स एग्जामिनेशन टीम बाय रिमूविंग 600 एक्सपर्ट्स एंड ऑनबोर्डिंग न्यू वंस। Jharkhand government releases list of 44 recruitment exams cancelled due to irregularities amid students' protest. Anti-corruption branch of Delhi government arrests former minister and AAP leader Satendra Jain and five others in Jal Board bribery case. UAE suspends all trade and financial dealings with Iran after accusing it of missile threat. And India to take on Pakistan in the crucial Pool D match of the FIH Men's Hockey World Cup in Amstelveen, Netherlands today. The government has approved the incentive scheme for promotion of domestic PNG connections aimed at bringing clean, safe and affordable piped cooking gas to households across the country. The scheme will be effective from the 1st of next month. The Minister of Petroleum and Natural Gas said that the scheme is designed to fast-track the expansion of active PNG connections, ensuring that more families can start using piped natural gas in the kitchens at the earliest. Currently, there are 1.74 crore domestic PNG connections across the country. The ministry added the new scheme directly incentivizes the city gas distribution companies to actively convert unbilled connections into working gas connections and expand the PNG network to new areas. It said that piped natural gas offers households a safer, cleaner and more convenient alternative to LPG cylinders and traditional cooking fuels. The scheme will be implemented over two tranches spanning 6 months. The National Testing Agency NTA has revamped its examination team by removing 600 experts and onboarding new experts. In a social media post, Ministry of Education said that a four-tier question paper checking system will be put in place by NTA to strengthen the scrutiny of the examination papers. The NTA will also induct 20 to 25 officials in the next 2 to 3 weeks. Further, NTA offices will be shifted to the new premises where security will be reinforced with CISF teams. Jharkhand government last night released a list of 44 recruitment exams that have been cancelled due to irregularities amid students' protests over the issue. Here is a report.
5: The Jharkhand government has cancelled 44 recruitment examinations conducted by JPSC, JSSC and outsourced agencies, including the JSSC CGL and examinations conducted by TDPL. The cancelled examinations include the JPSC 11th to 13th Civil Services examinations, CDPO, Drug Inspector, Civil Judge, Assistant Conservator of Forest, Forest Range Officer, Assistant Professor and other recruitment examinations. The government has also cancelled examination results where the preliminary work was conducted by TDPL, even if another agency subsequently handled the process. The notifications state that the JSSC CGL examination was cancelled based on findings emerging from the SIT probe into alleged irregularities and the ongoing CID investigation. The government has also decided to postpone 6 examinations and order CID investigations into 17 examinations. A fast-track court will be sought from the High Court for cases relating to alleged irregularities in JPSC and JSSC examinations. Internal vigilance cells will also be constituted in both commissions, while a committee headed by senior IAS officer Amitabh Kaushal will recommend reforms in the examination system. The committee is expected to submit its report to the government within 2 months. The decisions follow a 25-day student agitation demanding cancellation of disputed examinations and investigation into alleged irregularities, with students earlier announcing a proposed protest outside the Chief Minister's residence on August 20th. While students had welcomed the cancellation of the JSSC CGL and other examinations, they have maintained that the demand for a CBI probe must also be addressed. Mahesh Rahman, Akashwani News, Ranchi.
11: The anti-corruption branch of the Delhi government has arrested former Delhi Minister and AAP leader Satendra Kumar Jain, former CEO of the Delhi Jal Board Udit Prakash Rai and four others accused persons. Our correspondent reports that these arrests have been made in connection with alleged irregularities and criminal conspiracy in the tendering process related to augmentation and upgradation of the sewage treatment plants of the Delhi Jal Board.
6: The case was registered against them on the complaint of Directorate of Vigilance. During course of investigation, it was revealed that the tendering process allegedly involved restrictive technical specifications and conditions favoring a particular technology provider, thereby restricting competition and providing undue advantage to a selected private entity. Investigation further revealed that private persons were allegedly in regular communication with certain public servants and intermediaries in order to manipulate the tender process. ACB said it indicates an alleged nexus between private persons and public functionaries for influencing the tender conditions in favor of a particular technology provider. The investigation is examining the complete money trail and the alleged proceeds of crime. With Anupam Anand, Saklayan Akhtar for Akashwani News, Delhi.
11: In West Bengal, 9 people have been killed and 6 others injured in a fire at a hotel on Free School Street in New Market area in Kolkata early this morning. Police sources informed that the fire broke out at around 2 a.m. and thick smoke began billowing from the third floor of the 5-story building located right next to the fire brigade headquarters. Preliminary investigations revealed that the hotel reportedly had no fire safety or firefighting system. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. The United Arab Emirates has suspended all trade, commercial exchanges and financial transactions with Iran until further notice, citing rising regional tensions and concerns over threats to regional and international security. The announcement came after the UAE said its air defense systems detected 2 ballistic missiles launched from Iran towards the Gulf. Iran has not yet commented on the UAE's allegations. However, Tehran has warned that the Strait of Hormuz will remain closed until a peace agreement is reached with the United States. U.S. President Donald Trump has asked his negotiating team to hold off talks with Iran until Tehran is ready to make a deal, adding that there was no conflict within the administration's position on diplomatic engagement with Tehran. The development comes amid conflicting statements from Washington and Tehran over the status of the Strait of Hormuz and ongoing tensions between the two countries. Meanwhile, Iran said it will not reopen the Strait of Hormuz until the United States fulfills commitments under a 14-point Memorandum of Understanding, including lifting the blockade, releasing frozen Iranian assets, and easing oil sanctions. Israel has carried out airstrikes on the Abu Duhur Air Base in Syria's northwestern Idlib province, saying the action was aimed at preventing the deployment of Turkish troops at the base. 8 strikes reportedly hit the runway of the airbase, causing damage but no casualties. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu's office said Syria was on the verge of violating an agreed status quo on security matters by allowing Turkish troops to deploy at the base. Syria has condemned the Israeli action. Foreign Minister Assad al-Shibani described the strikes as an unjustified provocation and a violation of Syria's sovereignty, warning that they could threaten regional and global stability. The India Meteorological Department, IMD, has forecast very heavy rainfall conditions over east and west Uttar Pradesh, east Madhya Pradesh and Uttarakhand today. The weather agency predicted moderate to heavy rainfall over parts of northeast India, Delhi, Haryana, Chandigarh, Bihar, Chhattisgarh, coastal Karnataka, Himachal Pradesh, Jharkhand, Kerala, Mahe, sub-Himalayan West Bengal and Sikkim during the day. Thunderstorms and lightning conditions are predicted over north interior Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal today. Flood situation continues to remain grim in North Odisha, with swelling rivers inundating large areas of 6 districts and affecting around 1 million people. Baitarani continues to flow above the danger level at Akhuapara, while Brahmani and Salandhi and Subarnarekha are also swelling, leaving several villages marooned. Chief Minister Mohan Charan Majhi has announced 1,000 crore rupee assistance package for flood-affected people and farmers. We have more from a correspondent.
8: In Bhadrak, Bhandari Pokhari and Tihidi blocks remain among the most affected with flood water submerging villages and disrupting normal life. Jajpur, Kendrapada, Baleswar, Keunjhar and Mayurbhanj are also witnessing inundation with many people facing shortages of relief materials, shelter, food and drinking water. The swelling Brahmani and Salandhi rivers have added to the crisis while the Baitarani remains above the danger mark at Akhuapada. A fresh rise in the Subarnarekha has also inundated villages in Baleswar. Flood waters have damaged standing crops and created an acute shortage of fodder for livestock. Several schools remain closed as a precautionary measure in flood-affected areas. The state government has announced a 1,000 crore rupee relief package for affected people and farmers. Prakash Das for Akashwani News, Bhubaneswar.
11: On to sports and badminton, Indian shuttlers registered comprehensive wins at the BWF World Championships in New Delhi yesterday. Men's singles ace Lakshya Sen defeated Austria's Collins Philemon in the first round, while the Indian duo Trisha Jolie and Gayatri Gopichand continued their winning run to enter the pre-quarterfinals. We have a report.
12: Ace shuttler Lakshya Sen entered the second round of the men's singles at the BWF Badminton World Championships. He defeated Collins Philemon of Austria in the opening round. The Indian shuttler was down after the first game at 16-21. However, Lakshya clawed back to register one-sided wins in the next two games, 21-8, 21-4. In the women's doubles, India's Trisha Jolie and Gayatri Gopichand advanced to the pre-quarterfinals after outshining United States' Lauren Lamb and Alison Lee in straight games, 21-15, 21-12. Meanwhile, the Indian women's doubles pair of Kavipriya Selvam and Simran Singhi bowed out of the World Championships after losing to Stefanie Stoeva and Gabriela Stoeva of Bulgaria, 21-7, 21-14. Earlier in the day, Unnati Huda advanced to the women's single second round after Myanmar's Thet Tar Thuzar in straight games, 22-20, 21-16. Meanwhile, the mixed doubles duo of Rohan Kapoor and Rutvika Shivani Gadde faced a defeat against the Canadian pair of Jonathan Lai and Crystal Lai in the mixed doubles first round. After winning the first game by 22-20, the Indian duo lost the next two games by 19-21 and 17-21. With Vishnu P.S., Bhanu Pratap Singh, Akashwani News, Delhi.
11: In hockey, the Indian men's team will face arch rivals Pakistan in a crucial Pool D encounter of the FIH Men's Hockey World Cup in Amstelveen, the Netherlands today, with both teams battling for a place in the next round. India, currently on 3 points from two matches, need at least a draw to secure qualification. Pakistan, on the other hand, have just 1 point after two games. In men's cricket, host Sri Lanka will resume the second innings at the overnight score of 84 for 4 on day 4 of the first test match of the series at the Gale International Stadium in Sri Lanka today. Earlier, India were bowled out for 193 in the second innings, setting Sri Lanka a target of 372 runs. India were dismissed for 462 in the first innings, while Sri Lanka made 284 runs. The second and final test of the series will be played in Colombo from the 23rd of this month. In football, East Bengal FC will take on Sporting Club Delhi in the first semi-final of the 135th Durand Cup at the Salt Lake Stadium in Kolkata today. The match will begin at 7 p.m. IST, with both teams aiming to secure a place in the final. And now for a look at today's newspapers, it's over to Renu Kataria.
13: Thank you, Abhishek. National Testing Agency refresh, four-tier paper check, 600 experts out, CISF security at officers informs the Indian Express. Nitin Nabin taps Tauri for UP, Punia for Punjab ahead of 2027 polls, reports the Pioneer. The Pioneer, in its editorial piece, The Courage That Refuses to Look Away, writes that World Humanitarian Day honors the selfless service of humanitarian workers, but they need protection and funding, not just applause. Trump cites CEC, India poll rules to push US voter ID bill, states Hindustan Times. Pakistan Supreme Court orders Imran Khan be moved to hospital, reports the Asian Age. And finally, vocational education third language must for class 9 from the current academic session, writes the Times of India about Delhi government's revised class 9 examination and promotion policy. And with that, it's back to you, Abhishek.
11: Thank you, Renu. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Government approves incentive scheme to accelerate domestic PNG connections. National Testing Agency revamps its examination team by removing 600 experts and onboarding new ones. Jharkhand government releases list of 44 recruitment exams cancelled due to irregularities amid students' protest. Anti-corruption branch of Delhi government arrests former minister and AAP leader. Satender, Jan and five others in the Jal Board bribery case. UAE suspends all trade and financial dealings with Iran after accusing it of missile threat. And India to take on Pakistan in the crucial Pool D match of the FIH Men's Hockey World Cup in Amstelveen, Netherlands today. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
14: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। सरकार ने घरेलू पीएनजी कनेक्शन में तेजी लाने के लिए तरगीब की स्कीम को मंजूरी दे दी है। इम्तिहानात कराने वाली एजेंसी ने 600 माहिरीन को हटाकर और नए माहिरीन को शामिल करके इम्तिहानात से मुताल्लिक अपनी टीम की तश्कील नौ की है। झारखंड सरकार ने तलबा के एहतजाज के तनाजुर में उन 44 भर्ती इम्तिहानात की फहरिस्त जारी की है जो बेजाब्तगियों की वजह से मंसूख किए गए हैं। दिल्ली सरकार के बदनवानी मुखालिफ शोबे ने जल बोर्ड रिश्वत केस में साबिक वजीर और आम आदमी पार्टी के लीडर सत्येंद्र जैन और 5 दीगर अफराद को गिरफ्तार किया है। मुत्तहिद अरब इमारात ने ईरान से मिसाइल खतरे का इल्ज़ाम लगाते हुए उसके साथ सभी तिजारती और माली लेन देन मुअत्तल कर दिए हैं। और नीदरलैंड्स के शहर एम्स्टेलवीन में आज FIH मर्दों के हॉकी वर्ल्ड कप के पूल डी के अहम मैच में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। अब खबरें तफसील से। सरकार ने घरेलू पीएनजी कनेक्शन को फरोग देने के लिए तरगीब की स्कीम को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद पूरे मुल्क में घरों तक पाइप के जरिए माहौलियात के लिए साजगार, महफूज और कम खर्च खाना पकाने की गैस पहुंचाना है। मस्कूरा स्कीम का इतलाक अगले महीने की पहली तारीख से होगा। पेट्रोलियम और कुदरती गैस महकमे की वजारत ने कहा है कि पीएनजी कनेक्शन की तादाद में तेजी के साथ तौसी की खातिर ये स्कीम बनाई गई है ताकि मजीद कुनबे जल्द से जल्द अपनी रसोई में पाइप के जरिए पहुंचाई जाने वाली कुदरती गैस का इस्तेमाल शुरू कर सकें। फिलहाल मुल्क में 1,74,00,000 घरेलू पीएनजी कनेक्शन हैं। मस्कूरा स्कीम 6 महीने के अरसे में 2 मरहलों में नाफिज की जाएगी। वजारत ने कहा है कि पाइप के जरिए पहुंचाई जाने वाली कुदरती गैस LPG सिलेंडर और खाना पकाने के काम आने वाली रिवायती ईंधन का एक महफूज और ज्यादा सहूलत वाला मुतबादिल है। इम्तिहानात कराने वाली एजेंसी NTA ने 600 माहिरीन को हटाकर और नए माहिरीन को शामिल करके इम्तिहानात से मुताल्लिक अपनी टीम की तश्कील नौ की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर तालीम की वजारत ने कहा है कि इम्तिहान के पर्चों की जांच को मुस्तहकम बनाने की खातिर NTA सवाल नामों को चेक करने का 4 सथी निज़ाम नाफिज करेगी। इसके अलावा ये एजेंसी अगले 2-3 हफ्तों के दौरान 20-25 अहदेदारों को भी शामिल करेगी। इसके साथ साथ इम्तिहान कराने वाली एजेंसी NTA के दफातर नए मकाम पर मुंतकिल किए जाएंगे जहां CISF की टीमों की तैनाती के साथ सिक्योरिटी को मजीद मुस्तहकम बनाया जाएगा। इम्तिहानात को खुश उसलूबी के साथ कराने के लिए सिक्योरिटी और मुतालिका बुनियादी ढांचे की तमाम जरूरी सहूलियात दस्तियाब कराने की वजीर तालीम प्रहलाद जोशी की हिदायत के तनाजुर में NTA ने यह फैसला किया है। झारखंड सरकार ने तलबा के एहतजाज के तनाजुर में कल रात उन 44 भर्ती इम्तिहानात की फहरिस्त जारी की है जो बेजाब्तगियों की वजह से मंसूख किए गए हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
15: झारखंड सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए बताया है कि मंसूख किए गए इम्तिहानात में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन JPSC, JSSC और एक एजेंसी TDPL समेत दीगर एजेंसियों के जरिए कराए गए इम्तिहान शामिल हैं। जो इम्तिहान मंसूख किए गए हैं उनमें ड्रग इंस्पेक्टर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, डिप्टी कलेक्टर्स, डेंटल डॉक्टर, असिस्टेंट इंजीनियर्स, सिविल जज और फॉरेस्ट रेंज अफसरों की भर्ती के इम्तिहान

0: दरिया भी तुगयानी पर हैं, जिसकी वजह से कई गांव पानी से घिर गए हैं। रियासत के वजीर आला मोहन चरण मांझी ने सैलाब से मुतासर लोगों और किसानों के लिए 1,000 करोड़ रुपए के इमदादी पैकेज का ऐलान किया है। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: भद्रक, बंडारी, पोखरी और थीडी ब्लॉक सबसे ज्यादा मुतासर हुए हैं, जहां गांव जेरियाब आ गए हैं और मामूल की जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गई है। जाजपुर, केंद्रपाड़ा, बालासोर, केवंझार और मयूरभंज में भी सैलाब का पानी भर गया है और बहुत से लोगों को इमदादी अशिया, शेल्टर, खाने और पीने के पानी की किल्लत का सामना है। ब्रह्मणी और सालंदी दरियाओं में तुगयानी से बहरान बढ़ गया है, जबकि बैतरणी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। सैलाब से खड़ी फसलों को भी नुकसान पहुंचा है और मवेशियों के लिए चारे की शदीद किल्लत भी पैदा हो गई है। सैलाब से मुतासर इलाकों में एहतियात के तौर पर बहुत से स्कूलों को बंद कर दिया गया है। भुवनेश्वर से प्रकाश दाश की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान।
0: हॉकी में भारतीय मर्दों की टीम आज नीदरलैंड्स के एम्स्टलवीन में FIH मर्दों के हॉकी वर्ल्ड कप के पूल डी के अहम मैच में अपने रिवायती हरीफ पाकिस्तान का सामना करेगी। दोनों टीमें अगले राउंड के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। भारतीय टीम के पास 2 मैचों से 3 पॉइंट हैं और उसे क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 1 ड्रॉ की जरूरत है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास 2 मैचों से सिर्फ 1 पॉइंट है। बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ियों ने कल नई दिल्ली में BWF आलमी चैंपियनशिप में शानदार जीत दर्ज की। मर्दों के सिंगल्स के पहले राउंड में लक्ष्य सेन ने ऑस्ट्रिया के कॉलिंस फिल्मोन को हराया, जबकि त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी जीत का सिलसिला जारी रखते हुए प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। लक्ष्य सेन ने पहले राउंड में ऑस्ट्रिया के कॉलिंस फिल्मोन को 16-21, 21-8 और 21-4 से शिकस्त दी। खवातीन के डबल्स में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी सीधे मुकाबलों में अमरीका की लॉरेन लैम और एलिसन ली की जोड़ी को 21-15 और 21-12 से शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। मर्दों दूसरी जानिब खवातीन के डबल्स में कवि प्रिया सेल्वम और सिमरन सिंघी की भारतीय जोड़ी बल्गारिया की स्टेफनी स्टोएवा और गैब्रियला स्टोएवा की जोड़ी से 21-7 और 21-14 से हारने के बाद इस चैंपियनशिप से बाहर हो गई। मर्दों के क्रिकेट में मेजबान श्रीलंका पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन आज अपनी दूसरी इनिंग्स कल के 4 विकेट पर 84 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगा। ये मैच श्रीलंका के गाल बैन अल-अक़वामी स्टेडियम में खेला जा रहा है। कल शाम मैच खत्म होने पर सोनल दिनुशा और धनंजय दे सिल्वा क्रीज पर थे। इससे पहले भारतीय टीम अपनी दूसरी इनिंग्स में 193 रन पर आउट हो गई थी। इस तरह श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का निशाना मिला था। भारत ने पहली इनिंग्स में 462 रन बनाए थे, जवाब में श्रीलंका की टीम 284 रन ही बना सकी। सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच 23 अगस्त को कोलंबो में खेला जाएगा। फुटबॉल में आज एसिड बंगाल FC का मुकाबला कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में 135वें डूरंड कप के पहले सेमीफाइनल में स्पोर्टिंग क्लब दिल्ली से होगा। यह मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। दोनों टीमों की नजर फाइनल में जगह बनाने पर होगी। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
2: शुक्रिया कौनैन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबारात की शह सुर्खियाँ एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार प्रताप ने ब्रिक्स ममालिक के वज़राए माहौलियात की मीटिंग से मुतालिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार ने माहौलियात, जंगलात और मौसमियाती तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव के इस बयान को सुर्खी बनाया है कि ब्रिक्स की भारत की सदारत वजीर आजम नरेंद्र मोदी के उस नज़रिए से रहनुमाई हासिल करती है जिसमें तरक्की पजीर ममालिक और ग्लोबल साउथ के खदशात को एजेंडे में तरजीह दी गई है। अखबार इनकलाब ने वजारत दिफा के जरिए मुल्क सतह पर तैयार की जाने वाली 405 दिफाई मसनूआत की 6ठी फहरिस्त जारी करने से मुतालिक खबर को नुमाया तौर पर शाया किया है। जनूबी जोनल काउंसिल की 31वीं मीटिंग वजीर दाखिला अमित शाह की सदारत में जुमरात को तमिलनाडु में होगी, इस खबर को भी अखबारात ने अहमियत दी है।
0: आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सरकार ने घरेलू PNG कनेक्शन में तेजी लाने के लिए तरगीब की स्कीम को मंजूरी दे दी है। इम्तिहानात कराने वाली एजेंसी ने 600 माहिरीन को हटाकर और नए माहिरीन को शामिल करके इम्तिहानात से मुतालिक अपनी टीम की तश्कील नौ की है। झारखंड सरकार ने तलबा के एहतजाज के तनाजुर में उन 44 भर्ती इम्तिहानात की फहरिस्त जारी की है जो बेजाबतगियों की वजह से मनसूख किए गए हैं। दिल्ली सरकार

0: के बदउनवानी मुखालिफ शोबे ने जल बोर्ड रिश्वत केस में साबिक वजीर और आम आदमी पार्टी के लीडर सतेंद्र जैन और पांच दीगर अफराद को गिरफ्तार किया है। मुत्तहिदा अरब इमारात ने ईरान से मिसाइल खतरे का इल्जाम लगाते हुए उसके साथ सभी तिजारती और माली लेन देन मुअत्तल कर दिए हैं। और नीदरलैंड्स के शहर एम्स्टरडैम में आज FIH मर्दों के हॉकी वर्ल्ड कप के पूल डी के अहम मैच में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
1: श्यामाना जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण, आप ये प्रसारण प्रतिदिन सुनते हैं FM बालतल 103.7 MHz के अलावा FM पहलगाम 100.1 MHz पर। इसके अलावा देश विदेश से हमारे श्रोता हमें सुन पाते हैं DTH की सर्विसेज, न्यूज ऑन AIR की मोबाइल ऐप, वेव्स OTT प्लेटफॉर्म तथा YouTube की आकाशवाणी आराधना चैनल पर। श्रोताओं प्रतिदिन ये प्रसारण आप तक पहुंचता है सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक। श्रोताओं जैसा कि आप जानते हैं इस पवित्र यात्रा का आरंभ 3 जुलाई को बड़े धूमधाम के साथ हुआ था। लाखों श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन करके उनका आशीर्वाद लिया, लेकिन मौसम के बदलते मिजाज और यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन द्वारा 9 अगस्त से आम यात्रियों के लिए इस यात्रा को स्थगित कर दिया गया। पर शिव और शक्ति के प्रतीक पवित्र छड़ी मुबारक की यात्रा अपने निर्धारित वक्त पर होगी। श्रोताओं प्रशासन और पूजा परिषद ने साफ कर दिया है कि महंत तेपिंद्र गिरी जी की अगुवाई में भगवान शिव की पवित्र छड़ी मुबारक की पदयात्रा 22 अगस्त को होगी। श्रोताओं आम यात्रियों के लिए यात्रा भले ही स्थगित हो, पर छड़ी मुबारक की इस पदयात्रा के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। पवित्र छड़ी के साथ चलने वाले साधु संतों और पुरोहितों के लिए मार्ग में सुरक्षा बल, मेडिकल टीम्स और जरूरी राशन की पूरी व्यवस्था की गई है, ताकि ये प्राचीन परंपरा पूरी पवित्रता और सुरक्षा के साथ संपन्न हो सके। श्रोताओं आम भक्तों के लिए यात्रा भले ही रुक गई हो, लेकिन भोलेनाथ की यह भक्ति और परंपरा का ये दौर रुकने वाला नहीं है। पवित्र छड़ी मुबारक की दर्शन के लिए नागपंचमी के दिन कई सारे भक्त वहां दशमी अखाड़ा पहुंचे, और जैसा कि आप जानते हैं पवित्र छड़ी की पद यात्रा 22 अगस्त को शुरू होगी और पहलगाम के प्राचीन मार्ग से होते हुए पवित्र छड़ी मुबारक पवित्र गुफा पहुंचेगी। वहां पूजा अर्चना महाआरती के बाद विसर्जन के बाद इस वर्ष की अमरनाथ यात्रा का समापन होगा। श्रोताओं आइए नमकम चमकम सुनते हैं।

0: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के इस विशेष प्रसारण में आप चमकम सुन रहे थे। श्रोताओं, ये विशेष प्रसारण प्रतिदिन आप तक पहुंचता है एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज के अलावा एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। इसके अलावा आप हमें डीटीएच की विभिन्न सर्विसेज, यूट्यूब की आकाशवाणी आराधना चैनल, वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म तथा न्यूज ऑन एआईआर की मोबाइल ऐप पर भी सुन रहे हैं। श्रोताओं, इस वर्ष अमरनाथ जी की यात्रा 3 जुलाई को आरंभ हुई थी और जैसा कि आप जानते हैं श्रवण पूर्णिमा को 28 अगस्त को अपने समापन पर पहुंचेगी। श्रोताओं, इस विशेष प्रसारण के जरिए हमारी कोशिश रहती है कि अमरनाथ यात्रा से जुड़ी सभी सूचनाएं, सभी जानकारी आप तक पहुंचा सकें। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो हमारा फ़ोन नंबर है 9596990954 9596990954। यह है हमारा एकमात्र फ़ोन नंबर जिसके ज़रिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हमें कॉल भी कर सकते हैं। अगर आप हमारे प्रसारण के ज़रिए प्रसारण से जुड़ी कोई बात जानना चाहें या अमरनाथ यात्रा से जुड़ी कोई भी जानकारी हासिल करना चाहें तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है akashvanibaltal@gmail.com। इस ईमेल जरिए के ईमेल एड्रेस के जरिए आप हमें कोई भी प्रश्न, कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। श्रोताओं, अब वक्त है उर्दू में समाचार सुनने का। श्रोताओं, समाचारों के उस पार जुड़ेंगे आपके साथ फिर से इस विशेष प्रसारण में। सुनते रहिए श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण।
1: श्रीनगर है खबरों का बुलेटिन लेकर मैं आबिदा अख्तर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि इंतजामिया साबिक फौजियों और उनके अहलखाना की फलाह बहबूद को यकीनी बनाने की वादा बंद है। जम्मू कश्मीर राज्य सैनिक बोर्ड की 81वीं मीटिंग की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि साबिक फौजियों की कुर्बानियों को किसी भी सूरत में फरामोश नहीं किया जाएगा। मीटिंग के दौरान एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के साथ मुख्तलिफ अस्पतालों की एम्पैनलमेंट के इम्कान का भी जायजा लिया गया। मीटिंग में फौज की शुमाली कमान के सरबरा लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा और चीफ सेक्रेटरी अटल लुल्लू के अलावा कई दीगर अफसरान भी मौजूद थे। वजीर आला उमर अब्दुल्ला आज श्रीनगर शहर के कई इलाकों का दौरा कर रहे हैं। अपने दौरे के दौरान वजीर आला शहर में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों की पेशरफ और बल्दियाती ढांचे को मुस्तहकम बनाने पर जारी काम के अलावा अवामी खदमात की फराहमी का जायजा ले रहे हैं। आज सुबह बरबरशाह श्रीनगर के दौरे के दौरान उन्होंने वहां पुल की तामीर के लिए मुजवजा साइट का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि पुल की तामीर से शहर खास में ट्रैफिक की नकलो हमल में मजीद बेहतरी आएगी। वजीर आला ने महाराजगंज श्रीनगर में अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर की इमारत पर जारी काम का भी लिया। नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी, वजीर आला के मुशीर नासिर असलमानी और दीगर कई हुकाम उनके हमरा थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मुल्क के चुनाव निज़ाम से मुतल्लिक एक फैक्ट शीट जारी किया है। कमीशन ने कहा है कि यह इदारा एक आज़ाद आइनी अथॉरिटी है जो सदर, नायब सदर, लोकसभा, रियासती असम्बलियों और कौंसलों के इंतखाबात अमल में लाता है। वोटर शनाख्त के निज़ाम के बारे में कमीशन ने कहा है कि भारत में फोटो शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर इंतखाबात अमल में लाए जाते हैं। कमीशन ने मजीद कहा है कि अब तक मुल्क में तकरीबन 1 अरब राय दहिंदगान को इलेक्टोरल फोटो शनाख्ती कार्ड फराहम किए गए हैं और राय दहिंदगान ये कार्ड वोटर सर्विस पोर्टल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर अक्षय लाबरू ने कल गारमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल नवाकदल श्रीनगर में मुनक़दा एक तकरीब के दौरान जिले के 5 सरकारी स्कूलों में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लेबोरेटरियों का इफ्तिताह किया। इन लेबोरेटरियों का क्याम एक प्राइवेट इदारे की जानिब से कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत अमल में लाया गया है, जिनका मकसद डिजिटल टेक्नोलॉजी पर मबनी तालीमी ढांचे को मजीद मुस्तहकम बनाना है। डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर बिलाल महीदीन भट्ट ने जिला अफसरान की एक मीटिंग में प्रधानमंत्री आवास योजना की अमलावरी का जायजा लिया। मुतल्लिका हुकाम ने मजकूरा योजना के तहत हासिल किए गए अहदाफ के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इस योजना के ग्रामीण और शहरी मदों के तहत 32,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, जिनमें से 17,884 दरख्वास्त दहिंदगान को ग्रामीण रहनुमा खतूत के तहत अहल करार दिया गया है और इन दरख्वास्तों पर कार्रवाई शुरू की गई है। کولگام کے ضلع ترقیاتی کمشنر شہزاد عالم نے کل ضلع میں آدھار سیوا کیندر کا افتتاح کر کے اس کو عوام کے نام وقف کیا. اس کیندر میں آدھار سے متعلق تمام سہولیات اور خدمات دستیاب رہیں گی. اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے شہزاد عالم نے کہا کہ ضلع انتظامیہ لوگوں کو ہر طرح کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے. عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ایام متبرکہ جاری ہے. اس تعلق سے آثار شریف درگاہ حضرت بل اور وادی کی دیگر خانقاہوں مساجد اور بکجات میں خصوصی دینی مجالس کا اہتمام جاری ہے. درگاہ حضرت بل میں ختمات المعظمات کی مجلس کا اہتمام ہر روز نماز عصر سے نماز مغرب تک ہوتا ہے. اس دوران فرزندان توحید اللہ کے حضور سر بسجود ہو کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کر کے ملک و قوم کی فلاح و بہبود کے لیے خصوصی دعائیں مانگتے ہیں. واضح رہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب سعید 12 ربیع الاول یعنی 26 اگست کو منائی جائے گی. اننت ناگ کے ڈپٹی کمشنر جو پہلگام راستے کے لیے یاترا افسر بھی ہیں نے ایک میٹنگ کے دوران سالانہ امرناتھ جی یاترا کے سلسلے میں چھڑی مبارک کو گفا تک پہنچائے جانے کے لیے کیے جا رہے انتظامات کا جائزہ لیا. اس موقع پر بتایا گیا کہ چھڑی مبارک سری نگر سے 22 اگست کو روانہ کیا جائے گا اور مختلف مقامات پر رکنے کے بعد یہ 28 اگست کو پوتر گفا پہنچ جائے گی. یاترا افسر نے تمام افسروں کو ہدایت دی کہ وہ اس سلسلے میں تمام انتظامات مکمل کریں. نارکوٹکس کنٹرول بیورو نے منشیات کے کاروبار کے خلاف بڑی کارروائی کرتے ہوئے ایک ٹرانس نیشنل ڈرگ نیٹورک کا پردہ فاش کرتے ہوئے 15 کروڑ روپے مالیت کی نشیلی اشیاء ضبط کی ہے. اس سلسلے میں نائجیریا کے 4 باشندوں کو گرفتار کیا گیا ہے. این سی بی نے اس معاملے کے تعلق سے مزید تحقیقات شروع کی ہے. آخر میں درجہ حرارت. سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 21.4 ڈگری سیلسیس جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 23.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا. خدا حافظ.
0: شری امرناتھ جی یاترا 2026 کا یہ وشیش پرسارن آپ سن رہے ہیں. یہ وشیش پرسارن آپ تک پرتی دن پہنچتا ہے صبح 7 بجے سے شام 6 بجے تک. شروتاؤ آئیے گایتری منتر سنتے ہیں.

श्यामाना जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज के अलावा एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। इसके अलावा आप हमें सुन पाते हैं डीटीएच की सर्विसेज, यूट्यूब की आकाशवाणी आराधना चैनल, वेज ओटीटी प्लेटफॉर्म तथा न्यूज ऑन एआईआर की मोबाइल ऐप पर। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस वर्ष 57 दिनों की श्री अमरनाथ जी यात्रा 3 जुलाई को आरंभ हुई थी। दोनों ही मार्गों से, बालतल और पहलगाम वाले मार्गों से ये यात्रा आरंभ हुई और 4,80,000 से ज़्यादा तीर्थयात्रियों ने इस वक्त में बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा में जाके पवित्र शिवलिंगम के दर्शन प्राप्त किए। श्रोताओं, प्रशासन ने 9 अगस्त से यात्रा को स्थगित कर दिया दोनों ही मार्गों से, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण और यात्रा मार्ग पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो पहुंचा था उसकी मरम्मत के कारण ये यात्रा जो है 9 अगस्त से स्थगित रह गई। पर जैसा कि आप जानते हैं, छड़ी मुबारक की पवित्र यात्रा जो है, जो 22 अगस्त को शुरू होगी, वो बिल्कुल अपने शेड्यूल के हिसाब से जारी है। जी श्रोताओं, आपको बताते चले कि 12 अगस्त को शंकराचार्य मंदिर में पवित्र छड़ी मुबारक को ले जाया गया, वहाँ पूजा अर्चना हुई और वहाँ दर्शन किए गए। 13 अगस्त को शारिका भवानी मंदिर में इसकी पूजा हुई। 15 अगस्त को छड़ी स्थापना श्री अमरेश्वर मंदिर दशमी अखाड़ा में हुई और 17 अगस्त को छड़ी पूजन हुई नागपंचमी के मौके पर। दशमी अखाड़ा में ये छड़ी पूजन हुई और भक्तों के दर्शन के लिए छड़ी मुबारक को रखा गया। श्रोताओं, आपको बताते चले कि 22 अगस्त को दशमी अखाड़ा श्रीनगर से छड़ी मुबारक की पवित्र यात्रा जो है वो शुरू होगी। पवित्र छड़ी मुबारक 22 और 23 अगस्त को पहलगाम पहुंचेगी, जहां 2 दिन तक विशेष पूजा और विश्राम होगा। 24 अगस्त को पहलगाम से आगे बढ़कर यात्रा का अगला पड़ाव होगा चंदनवाड़ी। आपको याद दिलाना चाहेंगे, महंत दीपेंद्र गिरी जी की नेतृत्व में ये पद यात्रा शुरू होगी 22 अगस्त को साधु संतों के साथ। 25 अगस्त को चंदनवाड़ी से निकलकर साधु संत और भक्त पहुंचेंगे शेषनाग झील के पास और 26 और 27 अगस्त को 2 रात्रि विश्राम पंचतरणी में होगा। इसके बाद रात भर भजन कीर्तन की गूंज होगी और 28 अगस्त को पवित्र छड़ी मुबारक श्रवण पूर्णिमा के दिन पवित्र गुफा पहुंचेगी, जहां महापूजन का आयोजन होगा, आरती होगी और इस आरती के समाप्त होते ही साल 2026 की अमरनाथ यात्रा का सफलतापूर्वक समापन होगा। श्रोताओ, हमें उम्मीद है कि इस वर्ष की यात्रा में जितने भी तीर्थयात्री आए, उन्होंने जितनी भी दुआएं मांगी, बाबा भोले के दर्शन किए, उनके मन में जितनी भी विचलताएं थी वो खत्म हुई होगी, उनका मन शांत हुआ होगा और अपनी सारी मनोकामनाएं पूरी करके वो वापस अपने घरों को अच्छे से लौटे हैं। जी श्रोताओं, ये विशेष प्रसारण आप प्रतिदिन सुनते हैं, सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी यही कोशिश रहती है कि यात्रा से जुड़ी सभी सूचनाएं, सभी जानकारियां, सभी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहें। यदि आप हमसे कुछ बात करना चाहते हैं, कोई प्रश्न हो आपका यात्रा से मुतल्लिक या इस विशेष प्रसारण से मुतल्लिक, तो आप हम तक पहुंच सकते हैं आकाशवाणी

hotel@gmail.com ईमेल एड्रेस है हमारा, और हमारा एकमात्र फ़ोन नंबर है 9596990054। ये हमारा एकमात्र फ़ोन नंबर है जिसके ज़रिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। अगर हमारे इस विशेष प्रसारण से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी बात जो आप हमसे शेयर करना चाहें, इस एकमात्र नंबर से आप हम तक जुड़ सकते हैं। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, जो साल 2000 से श्री अमरनाथ जी यात्रा का देख रेख कर रहे हैं, उनका एक कंट्रोल रूम है जिसकी हेल्पलाइन नंबर है 1800-1807198 और 1800-1807199। ये दो हेल्पलाइन नंबर्स है उस कंट्रोल रूम के जो आपके लिए स्थापित किया गया है, ताकि हमारे तीर्थयात्रियों को कोई भी दिक्कत, कोई भी कठिनाई ना हो। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की एक आधिकारिक वेबसाइट भी है, जिस पर जाकर आप अमरनाथ यात्रा से जुड़ी सभी जानकारियां हासिल कर सकते हैं। वेबसाइट है www.jksasb.nic.in। जी श्रोताओ, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट, जिस पर जाकर आप सारी ही जानकारियां श्री अमरनाथ जी यात्रा से मुतल्लिक जान सकते हैं। श्रोताओं, कल अनंतनाग के डिप्टी कमिश्नर और पहलगाम रूट के यात्रा अधिकारी डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट ने डीसी ऑफिस में श्री अमरनाथ जी यात्रा की छड़ी मुबारक से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा के लिए एक अहम बैठक की। इस बैठक में अनंतनाग के एसएसपी अमोद अशोक नागपुरी, 8वीं जेकेपी के कमांडेंट पीडीए के सीईओ, नुनवन बेस कैंप चंदनवाड़ी शिशनाग और पंचतरणी स्टेशनों के कैंप डायरेक्टर्स, अनंतनाग के एडीसी, पहलगाम के एसडीएम के अलावा श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के प्रतिनिधि और अन्य संबंधित अधिकारी शामिल हुए। बैठक में छड़ी मुबारक की यात्रा को सुचारू और सुरक्षित बनाने के लिए की गई तैयारियों की विस्तार में समीक्षा की गई। छड़ी मुबारक के 22 अगस्त को श्रीनगर से निकलने और रास्ते में कई जगहों पर रुकते हुए 28 अगस्त को पवित्र गुफा तक पहुंचने की उम्मीद है। बताया गया है कि छड़ी मुबारक कई मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठानों के शामिल होगी, जिनमें बिजबिहाड़ा का शिव मंदिर, मार्तन तीर्थ मट्टन और पहलगाम का गौरी शंकर मंदिर शामिल हैं। डिप्टी कमिश्नर ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे छड़ी मुबारक की पूरी यात्रा के दौरान जलाव लकड़ी, भोजन, पूजा सामग्री, पीने का पानी, रहने की व्यवस्था और साफ सफाई जैसी सभी जरूरी व्यवस्थाओं का और सुविधाओं का उपलब्ध कराएं। उन्होंने सभी संबंधित विभागों के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत पर जोर दिया और अधिकारियों को सतर्क रहने और पवित्र गुफा तक सभी व्यवस्थाएं समय से पहले पूरी करने का निर्देश दिया। जी हाँ श्रोताओं, छड़ी मुबारक की यात्रा 22 अगस्त को शुरू होगी, श्रीनगर के दशमी अखाड़ा मंदिर से होते हुए अलग अलग मंदिरों में जाके पूजा होगी और उसके बाद, जैसा कि आप जानते हैं, 28 अगस्त श्रवण पूर्णिमा के दिन छड़ी मुबारक की महापूजन के बाद श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का समापन होगा। श्रोताओं, आइए अब आपको कुछ भजन सुनवाते हैं।

श्रोताओं, श्यामाना जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़ के अलावा FM पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इसके अलावा आप हमें DTH की सर्विसेज, YouTube की आकाशवाणी आराधना चैनल, न्यूज़ ऑन AIR की मोबाइल ऐप तथा वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी सुन रहे हैं। श्रोताओं, जब भी हम आंखें बंद करके भोलेनाथ का ध्यान करते हैं तो दिमाग में सबसे पहले आता है ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके हुए पहाड़, ठंडी हवाएं और उन्हीं बर्फानी चोटियों के बीच ध्यान में लीन हमारे नीलकंठ। कश्मीरी वादियों से लेकर कैलाश मानसरोवर तक, केदारनाथ से लेकर अमरनाथ की पवित्र गुफा तक, आखिर क्यों महादेव ने अपना निवास इन ऊंची वादियों को चुना? क्योंकि दोस्तों, ये ऊंची वादियां प्रतीक हैं शांति का, स्थिरता का और अहंकार से दूरी का। यह हमें सिखाती हैं कि जब हम दुनिया के शोर शराबे से ऊपर उठते हैं तभी हमें सच्ची शांति और भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलता है। सोचिए, हजारों फीट की ऊंचाई पर जहां सांस लेना भी मुश्किल होता है, वहां जब एक भक्त बम बम बोले के जयकारे लगाता है तो सारी थकावट पल भर में दूर हो जाती है। वो ऊंची वादियां किसी आम रास्ते का हिस्सा नहीं, वो भोलेनाथ तक पहुंचने की भक्ति की प्रतीक्षा है। जो भी भक्त इन वादियों में जाकर भोलेनाथ के दर्शन करता है वो खाली हाथ कभी वापस नहीं लौटता। उसको मिलता है शांति का, आनंद का और शिव जी का अभय ध्यान। श्रोताओं, चंदनवारी की ऊंची चढ़ाई हो, शेषनाग झील की ठंडक या पंचतरणी की विशाल के वादियां, जब भक्त इन दुर्गम पहाड़ों से होकर गुजरते हैं तो उनकी हर सांस में बस एक ही नाम होता है, बाबा बर्फानी। इन्हीं ऊंची वादियों के बीच से होकर गुजरती है पवित्र छड़ी मुबारक। महंत दीपेंद्र गिरी जी के साथ जब साधु संत और हजारों भक्त भगवा धीरज लेके आगे बढ़ते हैं तो ऐसा लगता है मानो पूरी वादी महादेव के जयकारों से गूंज उठी हो। श्रोताओं, लोग कहते हैं रास्ता बहुत कठिन है, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम है, बर्फ की ठंडक है, लेकिन जैसे ही भक्त पवित्र गुफा के अंदर उस पवित्र शिवलिंग के दर्शन करते हैं सारी थकावट एक पल में गायब हो जाती है। श्रवण पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के दिन जब छड़ी मुबारक पवित्र गुफा में प्रवेश करती है तो उन्हीं ऊंची वादियों में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है। वो पल होता है भक्ति और शिव कृपा के मिलन का। श्रोताओं, ऊंची वादियों और भोलेनाथ की भक्ति में डूबने के लिए सुनते हैं ये प्यारा सा भजन।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज के अलावा एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। इसके अलावा आप हमें डीटीएच की सर्विसेज, यूट्यूब के आकाशवाणी आराधना चैनल और न्यूज ऑन एआईआर की मोबाइल ऐप पर भी सुन रहे हैं। श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा का ये विशेष प्रसारण प्रतिदिन आप तक पहुंचता है सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक। जैसा कि आप जानते हैं, इस वर्ष यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई थी और 9 अगस्त को प्रशासन ने ये फैसला किया कि आम तीर्थयात्रियों के लिए यात्रा को स्थगित रखा जाएगा, क्योंकि यात्रा ट्रैक्स पर मरम्मत होना बाकी था। इस वजह से यात्रा को स्थगित कर दिया गया 9 अगस्त को ही। और जैसा कि आप सभी को मालूम है और जैसा कि हम बार बार इस विशेष प्रसारण के जरिए आपको बताते हैं कि इस वर्ष लगभग 4,80,000 से ज़्यादा तीर्थयात्रियों ने बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा में जाके माथा टेका है, वहां के पवित्र शिवलिंगम के दर्शन किए हैं। यहाँ श्रोतो, हालांकि 9 अगस्त से ही तीर्थयात्रियों के लिए यात्रा को बंद रखा गया है, पर जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि छड़ी मुबारक की पद यात्रा जो है 22 अगस्त से शुरू होने वाली है और महंत देवेंद्र गिरी जी के नेतृत्व में ये पवित्र यात्रा श्रीनगर के दशमी अखाड़ा से 22 अगस्त को शुरू होगी। 22 और 23 अगस्त को पवित्र छड़ी मुबारक पहलगाम पहुंचेगी, जहां 2 दिन तक विश्राम होगा विशेष पूजा करने के बाद, और 24 अगस्त को पहलगाम से आगे बढ़कर छड़ी मुबारक की पद यात्रा अगला पड़ाव जो होगा उसका वो होगा चंदनवाड़ी, और 25 अगस्त को चंदनवाड़ी से निकलकर साधु संत और भक्त पहुंचेंगे शेषनाग झील के पास। 26 और 27 अगस्त इसके बाद 2 दिन के लिए यात्रा जो है वो रुकेगी पंचतरणी में, जहां रात भर भजन कीर्तन की गूंज होगी, और उसके बाद 28 अगस्त को श्रवण पूर्णिमा के पावन दिन पर रक्षाबंधन के दिन जो पवित्र छड़ी मुबारक है वो पवित्र गुफा प्रवेश करेगी, वहाँ महापूजन का आयोग होगा, महाआरती होगी, भजन कीर्तन होगे, और उसके बाद ही विसर्जन, छड़ी मुबारक की विसर्जन के साथ साथ आप जानते हैं कि श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 अपने समापन को पहुँचेगी। और महापूजन, आरती और इस आरती के समापन के साथ ही अमरनाथ यात्रा का सफलतापूर्वक संपन्न होगा। श्रोताओं, आपको बताना चाहेंगे, आप ये विशेष प्रसारण सुन रहे हैं आकाशवाणी से एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। इसके अलावा आप हमें सुन पा रहे हैं डीटीएच के विभिन्न सर्विसेज, यूट्यूब की आकाशवाणी आराधना चैनल, वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म तथा न्यूज ऑन एआईआर की मोबाइल ऐप पर। श्रोताओं, अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इस विशेष प्रसारण से रिलेटेड अगर आपका कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो, कोई जानकारी जो आप हासिल करना चाहें अमरनाथ यात्रा से रिलेटेड, तो आप नंबर नोट फरमाएं, 9596990954, ये एक फ़ोन नंबर है जिसके ज़रिए आप हम तक पहुँच सकते हैं। इसके अलावा ईमेल एड्रेस

आप कॉल कर सकते हैं। और जो कंट्रोल रूम स्थापित किया गया हमारे तीर्थयात्रियों की सहूलियतों के लिए, उस पर आप कॉल कर सकते हैं 1-4-4-6-4, ये हेल्पलाइन नंबर श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड का।

0: यमुना जी यात्रा का विशेष प्रसारण, आइए अब आपको दिल्ली लिए चलते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि को अब वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है। श्री वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश जापान निवेश शिखर सम्मेलन में कहा कि देश 6 से 8% की विकास दर से आगे बढ़ रहा है।
2: The investment story.
3: हमारी विकास यात्रा में निवेश की अहम भूमिका रही है। आज हम हर साल करीब 130 अरब डॉलर का सार्वजनिक निवेश कर रहे हैं। इससे अर्थव्यवस्था में $1 के निवेश पर करीब $3.6 की आर्थिक गतिविधि होती है। इसके साथ ही इससे रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं और ये सुनिश्चित करने में भी सहायता मिली है कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुँचे।
2: बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ रीच एवरी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि देश के 99.6% रेलवे नेटवर्क का विद्युतीकरण हो चुका है।
3: आज देश का 99.6% रेलवे नेटवर्क विद्युतीकृत हो चुका है। पिछले एक दशक में 38,000 किलोमीटर नई रेल लाइनें जोड़ी गई हैं और 162 सेमी हाई स्पीड ट्रेनें शुरू की गई हैं।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में करीब 65,000 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण किया गया है, जबकि हवाई अड्डों की संख्या भी दोगुनी हो गई है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत और जापान की साझेदारी साझा विकास, प्रौद्योगिकी और समृद्धि पर आधारित है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 4थी भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक में भाग लेने के लिए आज प्रतिनिधिमंडल के साथ सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा पर हैं। प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री

जितिन प्रसाद शामिल हैं। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी। ये दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग का एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय मंच है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से उत्तराखंड के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में भारतीय वन सेवा के 2025-27 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से संवाद करेंगे और उन्हें संबोधित करेंगे। दिल्ली सरकार इस महीने की 26 तारीख को नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को आधिकारिक पेंशन पत्र सौंपेगी। सरकार ने बताया है कि पेंशन की राशि अगले महीने की पहली तारीख से सीधे महिलाओं के खातों में जमा होना शुरू हो जाएगी। जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने खराब मौसम के मद्देनजर एहतियात के तौर पर यात्रा के लिए नए पंजीकरण पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। जिन श्रद्धालुओं ने पहले ही पंजीकरण करा लिया है उन्हें मौसम की स्थिति और प्रशासन के निर्देशों के अनुसार यात्रा की अनुमति दी जा रही है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज तड़के न्यू मार्केट इलाके में एक होटल में आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। श्री राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों की सहायता कर रहा है। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के मिक्स डबल स्पर्धा में भारत के ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने मकाओ के लियोन योक चोंग और एनजी वेंग ची को हराया। क्वार्टर फाइनल में ध्रुव और तनिषा का मुकाबला चीन की जोड़ी चेंग फांग हुई और गुआ शिनवा से होगा। भारत के साथ गोल में क्रिकेट टेस्ट मैच के पांचवें दिन श्रीलंका ने दूसरी पारी में 6 विकेट पर 175 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत अपनी दूसरी पारी में 193 रन पर ऑल आउट हो गया और श्रीलंका को 372 रन का लक्ष्य दिया गया। घरेलू शेयर बाजार में आज गिरावट का रुख है। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 342 अंक गिरकर 76,893 पर और निफ्टी 104 अंक गिरकर 24,051 पर आ गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्यामानाजी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज के अलावा एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। इसके अलावा आप हमें सुन पा रहे हैं डीटीएच की विभिन्न सर्विसेज, यूट्यूब की आकाशवाणी आराधना चैनल, वेज ओटीटी प्लेटफॉर्म तथा न्यूज ऑन एआईआर की मोबाइल ऐप पर। श्रोताओं, अभी तक मैं आपके साथ जुड़ी हुई थी आपकी साथी उद्घोषिका इरम कुरैशी। अब हमारी साथी जुड़ रही अनिका रशीद, इनके साथ आप शाम 6 बजे तक ये विशेष प्रसारण सुनेंगे।

गुड आफ्टरनून, आदाब, नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपकी उद्घोषक अनीका रशीद और आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा का विशेष प्रसारण FM बाल दल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz और न्यूज़ ऑन AIR के आराधना चैनल, और इसके अलावा आप हमें DTH और वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी सुन पा रहे हैं।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज के अलावा एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज और इसके अलावा आप हमें सुन पा रहे हैं डीटीएच के विभिन्न सर्विसेज, आकाशवाणी आराधना चैनल और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म तथा न्यूज ऑन एआईआर के मोबाइल ऐप पर। श्रोताओं, अमरनाथ जी की यात्रा की सदियों पुरानी परंपराओं में छड़ी मुबारक का विशेष स्थान है। छड़ी मुबारक को भगवान शिव की पवित्र छड़ी माना जाता है। ये पवित्र छड़ी श्रीनगर के दशनमी अखाड़ा के श्री अमरेश्वर मंदिर में रखी जाती है और इसकी देखरेख महंत दीपेंद्र गिरी करते हैं। हर साल अमरनाथ यात्रा के दौरान इस पवित्र छड़ी को पारंपरिक विधि विधान के साथ श्रीनगर से पहलगाम ले जाया जाता है। यहीं से इसकी अमरनाथ की पवित्र गुफा तक की पारंपरिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण चरण शुरू होता है। छड़ी मुबारक के साथ जुड़ी परंपराओं में भूमि पूजन, नवग्रह पूजन, ध्वजरोहण और छड़ी पूजन जैसे अनुष्ठान शामिल हैं। ये सिर्फ एक पवित्र वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की परंपरा नहीं है, बल्कि अमरनाथ जी यात्रा की प्राचीन धार्मिक परंपरा और उसकी निरंतरता का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। श्रोताओं, सुनते रहिए श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण।

श्रोता हूँ अमरनाथ जी, यात्रा 2026 के दौरान छड़ी मुबारक से जुड़ी कई महत्वपूर्ण अनुष्ठान श्रीनगर में भी होंगे। 12 अगस्त को छड़ी मुबारक को श्रीनगर के प्रसिद्ध शंकराचार्य मंदिर ले जाया गया, जहां दर्शन और पूजन की परंपरा निभाई गई। 13 अगस्त को पवित्र छड़ी को शरी का भवानी मंदिर ले जाया गया और 15 अगस्त को श्री आमरेश्वर मंदिर दशनमी अखाड़ा में छड़ी स्थापना की परंपरा पूरी की जाएगी और 17 अगस्त को नाग पंचमी के पवित्र अवसर पर दशनमी अखाड़ा में पारंपरिक छड़ी पूजन हो चुकी है और इसके बाद 22 अगस्त से छड़ी मुबारक अमरनाथ की पवित्र गुफा की ओर अपनी मुख्य यात्रा पर रवाना होगी। श्रोताओं, छड़ी मुबारक से जुड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए श्री अमरनाथ जी यात्रा के 2026 के इस विशेष प्रसारण में।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़ के अलावा एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और इसके अलावा आप हमें सुन पा रहे हैं डीटीएच के विभिन्न सर्विसेज, आकाशवाणी के आराधना चैनल, वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म तथा न्यूज़ ऑन एआईआर की मोबाइल ऐप पर। श्रोताओं, आइए समाचार सुनते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि को अब वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है। आज नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने उत्तर प्रदेश जापान निवेश शिखर सम्मेलन में कहा कि देश 6 से 8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ रहा है। श्री वैष्णव ने कहा कि भारत के पास अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। पिछले 10 वर्षों में करीब 65,000 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण किया गया है, जबकि हवाई अड्डों की संख्या भी दोगुनी हो गई है। उन्होंने कहा कि देश में रेल नेटवर्क में व्यापक सुधार हुआ है।
1: आज देश का 99.6% रेलवे नेटवर्क विद्युतीकृत हो चुका है। पिछले एक दशक में 38,000 किलोमीटर नई रेल लाइनें जोड़ी गई हैं और 162 सेमी हाई स्पीड ट्रेनें शुरू की गई हैं।
0: इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत और जापान की साझेदारी साझा विकास, प्रौद्योगिकी और समृद्धि पर आधारित है।
2: उत्तर प्रदेश आज भारत की टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल होते हुए भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बना है। बीते 9 वर्षों में हमने सेफ्टी, स्टेबिलिटी एंड स्पीड के साथ उत्तर प्रदेश के बजट को, उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है। 96 लाख से अधिक MSME यूनिट, 35,000 से अधिक बड़े उद्योग और 22,000 से अधिक स्टार्टअप आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति दे रहे हैं।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 4थी भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक में भाग लेने के लिए आज प्रतिनिधिमंडल के साथ सिंगापुर पहुंच गईं। प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद शामिल हैं। इस दौरान विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन से मुलाकात की। झारखंड सरकार ने अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी कर दी है। इनमें वर्ष 2014 से झारखंड लोक सेवा आयोग और आउटसोर्स एजेंसी डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े धनशोधन मामले की जांच के सिलसिले में उत्तर प्रदेश के रामपुर और सहारनपुर तथा दिल्ली में 10 परिसरों पर छापेमारी की। दिल्ली सरकार इस महीने की 26 तारीख को नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में दिल्ली लक्ष्मी योजना के

0: तहत पात्र महिलाओं को आधिकारिक पेंशन पत्र सौंपेगी। सरकार ने बताया है कि पेंशन की राशि अगले महीने की पहली तारीख से सीधे महिलाओं के खातों में जमा होना शुरू हो जाएगी। जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने खराब मौसम के मद्देनजर एहतियाती तौर पर यात्रा के लिए नए पंजीकरण पर अस्थायी रोक लगा दी है। जिन श्रद्धालुओं ने पहले ही पंजीकरण करा लिया है, उन्हें मौसम की स्थिति और प्रशासन के निर्देशों के अनुसार यात्रा की अनुमति दी जा रही है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज तड़के न्यू मार्केट इलाके में एक होटल में आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे को देखते हुए ईरान के साथ सभी प्रकार के व्यापारिक और वाणिज्यिक लेनदेन स्थगित कर दिया है। अमीरात के विदेश मंत्रालय की संचार निदेशक अफरा अल हामेली ने बताया कि इस फैसले का उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता तथा वित्तीय व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय कानून और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाए रखना है। बैडमिंटन में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो की भारतीय जोड़ी BWF विश्व चैंपियनशिप के मिक्स डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अब भारतीय जोड़ी का सामना चीन की जोड़ी से होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज लगभग 0.5% गिरावट का रुख है। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 315 अंक गिरकर 76,921 पर और निफ्टी 97 अंक गिरकर 24,058 पर था। मौसम विभाग ने आज पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर पूर्वी हिस्सों दिल्ली, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़ में दिन में तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw has said that India's economic growth is now recognized globally and the country is growing at a growth range of 6-8%. He said this growth story is driven by four key pillars: investment in social, digital and physical infrastructure, inclusive growth and a strong focus on manufacturing. Addressing the Uttar Pradesh-Japan Investment Summit 2026 in New Delhi today, Mr. Vaishnaw said, investment is an important part of the country's growth journey, with India investing around $130 billion every year.
2: We have been growing at a very sustained pace of 6-8% growth band, with moderate under control inflation, with very good balance sheet, and making sure that the entire country grows together. This is possible because of the four pillars of our growth story: investment in social, digital and physical infrastructure.
1: The Enforcement Directorate or ED has conducted searches at 10 premises in Rampur and Saharanpur in Uttar Pradesh and Delhi in connection with a money laundering investigation involving the Maulana Muhammad Ali Johar Trust and Muhammad Ali Johar University in Rampur. The ED said the searches were carried out under the Prevention of Money Laundering Act 2002. It added the investigation relates to the alleged diversion of government contract funds through private contractors and their subsequent use, including for creation of assets for the university or the trust. The ED said that the searches were aimed at tracing the alleged proceeds of crime and recovering financial records, documents and digital evidence related to the diversion and utilization of government funds. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has today embarked on an official visit to Singapore with a ministerial delegation to participate in the fourth India-Singapore Ministerial Roundtable. The delegation comprised External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar, Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal and Union Minister of State for Electronics and IT Jitin Prasad. Established in 2022, the India-Singapore Ministerial Roundtable is a key high-level economic mechanism between India and Singapore. It provides a platform to review progress and explore new areas of collaboration across six pillars, including advanced manufacturing, connectivity, digitalization, healthcare and medicine, skill development and sustainability. In Jammu and Kashmir, in view of the prevailing adverse weather conditions, Sri Mata Vaishno Devi Shrine Board has temporarily suspended fresh registration for the Sri Mata Vaishno

श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz के अलावा FM पहलगाम 100.1 MHz और इसके अलावा आप हमें सुन पा रहे हैं DTH के विभिन्न सर्विसेज, आकाशवाणी आराधना चैनल, वेव्स OTT प्लेटफॉर्म तथा न्यूज़ ऑन AIR की मोबाइल ऐप पर।

श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz के अलावा FM पहलगाम 100.1 MHz और इसके अलावा आप हमें सुन पा रहे हैं DTH के विभिन्न सर्विसेज, आकाशवाणी की आराधना चैनल, वेज OTT प्लेटफॉर्म तथा न्यूज़ ऑन AIR की मोबाइल ऐप पर। श्रोताओं, अब से कुछ देर बाद आप समाचार सुनेंगे, हमारे साथ बने रहिए।

0: Buren Cup at the Salt Lake Stadium in Kolkata today. The match will begin at 7 PM IST, with both teams aiming to secure a place in the final. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Union Minister Ashwini Vaishnaw says government investing around $130 billion in public investment every year, resulting in sustained economic growth. Supreme Court seeks Centre's response for implementing Radhakrishnan Committee's recommendations on exam reforms after NEET UG paper leak. Weather Department forecasts very heavy rainfall over parts of Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Uttarakhand today. India defeats Sri Lanka in first test by 165 runs. Manav Sathar takes 6 wickets. And in men's hockey, India to take on arch rivals Pakistan in AFIH World Cup at Wagener this afternoon. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा, भारत सतत वृद्धि दर को बनाए रखने के लिए प्रतिवर्ष लगभग 130 अरब अमरीकी डॉलर का निवेश कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी पेपर लीक के बाद परीक्षा सुधार पर राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार से जवाब मांगा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच 165 रन से जीता। मानव सुथार ने 6 विकेट लिए। और एफआईएच हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि को अब वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है। आज नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने उत्तर प्रदेश जापान निवेश शिखर सम्मेलन में कहा कि देश 6 से 8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ रहा है।
2: इन्वेस्टमेंट स्टोरी, हमारी विकास यात्रा में निवेश की अहम भूमिका रही है। आज हम हर साल करीब 130 अरब डॉलर का सार्वजनिक निवेश कर रहे हैं। इससे अर्थव्यवस्था में $1 के निवेश पर करीब $3.6 की आर्थिक गतिविधि होती है। इसके साथ ही इससे रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं और ये सुनिश्चित करने में भी सहायता मिली है कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुँचे।
3: बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ रीच एवरी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि भारत के पास अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। पिछले 10 वर्षों में करीब 65,000 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण किया गया है, जबकि हवाई अड्डों की संख्या भी दोगुनी हो गई है। उन्होंने कहा कि देश में रेल नेटवर्क में व्यापक सुधार हुआ है।
2: आज देश का 99.6% रेलवे नेटवर्क विद्युतीकृत हो चुका है। पिछले एक दशक में 38,000 किलोमीटर नई रेल लाइनें जोड़ी गई हैं और 162 सेमी हाई स्पीड ट्रेनें शुरू की गई हैं।
1: इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत और जापान की साझेदारी साझा विकास, प्रौद्योगिकी और समृद्धि पर आधारित है।
4: उत्तर प्रदेश आज भारत की टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल होते हुए भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बना है। बीते 9 वर्षों में हमने सेफ्टी, स्टेबिलिटी एंड स्पीड के साथ उत्तर प्रदेश के बजट को, उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है। 96 लाख से अधिक एमएसएमई यूनिट्स, 35,000 से अधिक बड़े उद्योग और 22,000 से अधिक स्टार्टअप आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति दे रहे हैं।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत और जापान सहयोग महत्वपूर्ण दिशा में आगे बढ़े हैं।
5: जापान के साथ भारत की पार्टनरशिप केवल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप नहीं है, ये डेवलपमेंट की पार्टनरशिप है, ये डिप्लोमेसी की पार्टनरशिप है और ये डिग्निटी की पार्टनरशिप है। उत्तर प्रदेश आपको केवल इन्वेस्टर नहीं मानेगा, आपको डेवलपमेंट पार्टनर मानेगा, क्योंकि हम मानते हैं इन्वेस्टमेंट का सर्वोत्तम रूप है जो कैपिटल के साथ साथ कैपेबिलिटी भी लाती है, टेक्नोलॉजी के साथ टैलेंट लाता है और प्रॉफिट के साथ प्रॉस्पेरिटी भी लाता है और रेवेन्यू से ज्यादा रिलेशन मजबूत करता है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजोरी कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक से द्विपक्षीय

0: रक्षा संबंधों को और मजबूत करने, रणनीतिक विश्वास और सहयोग बढ़ाने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। श्री कोइजुमी ने आज मुंबई में पश्चिमी नौसेना कमान का दौरा किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन चौथी भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक में भाग लेने के लिए आज प्रतिनिधिमंडल के साथ सिंगापुर पहुंच गईं। बैठक कल होगी। प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
1: इस दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालकृष्ण से मुलाकात की। दोनों विदेश मंत्रियों ने सिंगापुर में भारतीय उच्चायोग के नए चांसलरी परिसर की आधारशिला भी रखी। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत और सिंगापुर के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा की। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी। ये दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग का एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय मंच है। इसके अंतर्गत उन्नत विनिर्माण, संपर्क, डिजिटल क्षेत्र, स्वास्थ्य और चिकित्सा, कौशल विकास तथा सतत विकास सहित छह प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की जाती है और नए अवसर तलाशे जाते हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि बैठक में भारत सिंगापुर आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नए अवसरों पर चर्चा होगी। सकलैन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने भविष्य में प्रश्न पत्र लीक जैसे मामले रोकने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए को संस्थागत रूप देने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें सुरक्षित बुनियादी ढांचा, समर्पित परीक्षा केंद्र, साइबर सुरक्षा प्रणाली, संस्थागत विशेषज्ञता और परीक्षा संबंधी कार्यों के लिए एक स्थायी तंत्र शामिल हो। नीट यूजी 2026 पेपर लीक से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने शिक्षा मंत्रालय के केंद्रीय सचिव को निर्देश दिया कि वे हलफनामा दाखिल करें, जिसमें ये बताया जाए कि राधा कृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा नंदन नीलेकणी समिति द्वारा सुझाए गए आवश्यक संशोधनों को भी इसमें शामिल किया जाए। न्यायालय ने कहा कि इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि देश में एक मजबूत परीक्षा संस्थान हो जो विशेषज्ञता को बनाए रखने और तकनीकी परिवर्तनों के अनुकूल होने में सक्षम हो। नीट यूजी 2024 प्रश्न पत्र लीक विवाद के बाद पूर्व आईएसआरओ अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में के राधाकृष्णन समिति का गठन किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका में लापता और बचाए गए बच्चों की पहचान तथा उन्हें उनके परिवारों से मिलाने के लिए राष्ट्रीय डीएनए और बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली बनाने की मांग की गई है। न्यायालय ने गृह मंत्रालय और आयोग को नोटिस जारी किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में उत्तर प्रदेश के रामपुर और सहारनपुर तथा दिल्ली में 10 परिसरों पर छापेमारी की है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार इस महीने की 26 तारीख को नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को आधिकारिक पेंशन पत्र सौंपेगी। सरकार ने बताया है कि पेंशन की राशि अगले महीने की पहली तारीख से सीधे महिलाओं के खातों में जमा होना शुरू हो जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि योजना शुरू होने के मात्र 18 दिनों में ही लगभग 8,00,000 महिलाओं ने दिल्ली लक्ष्मी योजना पोर्टल पर पंजीकरण कराया, जबकि इसके बाद 5,00,000 से अधिक आवेदन जमा किए गए हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने आज विधानसभा में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि विधानसभा के सभी सदस्यों को नया वाहन, चालक और सहायक दिया जाएगा। इसके अलावा ईंधन खर्च के लिए हर महीने 75,000 रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने उत्तरी चेन्नई में 300 करोड़ रुपए की लागत से 400 बिस्तरों वाला नया अस्पताल बनाने की भी घोषणा की। उन्होंने मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत इलाज के लिए बीमा राशि 5,00,000 रुपए से बढ़ाकर 25,00,000 रुपए करने की भी घोषणा की। पंजाब पुलिस ने नवनियुक्त रक्षा कर्मियों के सत्यापन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए ऑनलाइन डिजिटल पोर्टल शुरू किया है।

0: ये पोर्टल रक्षा मंत्रालय से जुड़ा है जो नए भर्ती हुए कर्मियों के दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों का सत्यापन करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज उत्तरी छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश हो सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, विदर्भ, तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, केरलम और माहे में भी इसी तरह का मौसम रह सकता है। भुवनेश्वर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तरी ओडिशा के कई हिस्सों में अब भी बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है।
1: उड़ीसा में बाढ़ का संकट अभी भी भारी मुश्किलें पैदा कर रहा है, खासकर भद्रक जिले में जहां बैतरणी और सालंदी नदियों के उफान के कारण बड़े इलाके जलमग्न है। वासुदेवपुर, तिहिड़ी, धामनगर, भंडारी पोखरी और चांदबली ब्लॉक के गांव अभी भी बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर आज 297 स्कूल और 395 आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखे हैं। उड़ीसा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स ODRAF के जवानों ने केंद्रापड़ा जिले के कुलसाही गाँव में एक सरकारी आवासीय स्कूल में 4 दिन से फंसे 230 छात्रों को बचाया है। IMD ने शुक्रवार से रविवार तक उड़ीसा में कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के धारचूला क्षेत्र में कल देर रात हुई तेज वर्षा से धारचूला तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुलागाड़ में बेली ब्रिज ध्वस्त हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: धारचूला क्षेत्र में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण कुलागाड़ में बेली ब्रिज ध्वस्त होने से आदि कैलाश और कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग के साथ ही चीन सीमा को जोड़ने वाला सड़क संपर्क भी बाधित हो गया है। मार्ग बंद होने से दारमा, चौदास और व्यास घाटी का संपर्क जिला मुख्यालय और धारचूला क्षेत्र से कट गया है। प्रशासन ने पुल को जल्द बहाल करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। BRO के अनुसार आज शाम तक डायवर्जन रूट का कार्य पूरा होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और भूस्खलन के कारण 100 से अधिक ग्रामीण सड़कें बाधित हैं। मौसम विभाग ने देहरादून और बागेश्वर में आज भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी करी है। वहीं टहरी, पौड़ी, हरिद्वार, चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल और उधम सिंह नगर में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई गई है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: जम्मू कश्मीर में खराब मौसम को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने एहतियात के तौर पर यात्रा के लिए नए पंजीकरण पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। एक रिपोर्ट।
3: श्री माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए पहले से पंजीकृत और वैध RFID कार्ड वाले श्रद्धालुओं को प्रशासन के निर्देशों के अनुसार यात्रा की अनुमति दी जा रही है। श्रद्धालुओं से श्राइन बोर्ड और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। नए पंजीकरण पर फैसला मौसम और सुरक्षा की स्थिति को देखते हुए लिया जाएगा। वहीं श्री अमरनाथ यात्रा का 455 श्रद्धालुओं वाला तीसरा जत्था आज तड़के जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से पुंछ के राजपुरा गांव के लिए रवाना हुआ। इस बीच मौसम विभाग ने आज जम्मू कश्मीर में कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू से N गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मीनाक्षी।
0: भारत ने गोल में 2 मैचों की क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच में आज श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। भारत ने श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया था। श्रीलंका की पूरी टीम 206 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। भारत की ओर से मानव सुथार ने 6 विकेट लिए। FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी में नीदरलैंड्स में आज भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। भारत ने 2 मैचों में 3 अंक हासिल किए हैं। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के मिक्स डबल्स स्पर्धा में भारत के ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। मकाऊ की जोड़ी को उन्होंने हराया। प्री क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी का सामना चीन की जोड़ी से होगा। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी भी वॉकओवर मिलने के बाद प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। कोलकाता पुलिस ने न्यू मार्केट इलाके में मिर्जा गालिब स्ट्रीट स्थित एक होटल में लगी आग में 9 लोगों की मौत की जांच के लिए एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। मृतकों में 2 महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। 16 घायल लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता अग्नि दुर्घटना पर दुख

0: व्यक्त किया है। घरेलू शेयर बाजार में आज लगभग आधा प्रतिशत गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 365 अंक गिरकर 76,871 पर और निफ्टी 110 अंक गिरकर 24,045 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारत सतत वृद्धि दर को बनाए रखने के लिए प्रतिवर्ष लगभग 130 अरब अमरीकी डॉलर का निवेश कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी पेपर लीक के बाद परीक्षा सुधार पर राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार से जवाब मांगा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच 165 रन से जीता। मानव सुथार ने 6 विकेट लिए। और FIH हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: श्रोताओं, श्री अमरनाथ यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz के अलावा FM पहलगाम 100.1 MHz पर, और इसके अलावा आप हमें सुन पा रहे हैं DTH के विभिन्न सर्विसेज जैसे आकाशवाणी के आराधना चैनल, वेव्स OTT प्लेटफॉर्म तथा न्यूज़ ऑन AIR की मोबाइल ऐप पर।

श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज के अलावा एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज और इसके अलावा आप हमें सुन पा रहे हैं डीटीएच के विभिन्न सर्विसेज, आकाशवाणी आराधना चैनल, वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म, न्यूज ऑन एआईआर की मोबाइल ऐप पर। श्रोताओं, श्रावण का महीना हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है। ये महीना भगवान शिव की भक्ति और उपासना के लिए विशेष महत्व रखता है। इस दौरान भक्त श्रद्धा के साथ भगवान शिव की पूजा करते हैं, शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करते हैं और व्रत रखते हैं। श्रावण के सोमवार का भी विशेष महत्व माना जाता है। श्रावण का महीना हमें श्रद्धा, सेवा और प्रकृति के प्रति सम्मान का संदेश देता है। बारिश के इस मौसम में धरती हरी भरी हो उठती है, इसलिए ये महीना प्रकृति की सुंदरता और आध्यात्मिकता दोनों से जुड़ा हुआ है। ये समय है अपने मन को शांत करने का, अच्छे विचारों को अपनाने का और ईश्वर के प्रति अपनी आस्था को और गहरा करने का। श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल के अलावा एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, हमारे साथ बने रहिए।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण। श्रोताओं, आइए शिव भजन सुनते हैं।

0: श्रोता श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz के अलावा FM पहलगाम 100.1 MHz और इसके अलावा आप हमें सुन पा रहे हैं DTH के विभिन्न सर्विसेज, आकाशवाणी आराधना चैनल, वेव्स OTT प्लेटफॉर्म तथा न्यूज ऑन AIR की मोबाइल ऐप पर। श्रोताओं हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं पहलगाम से हमारे संवाददाता इस तारीख छड़ी मुबारक के हवाले से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। तारिक साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: निकर रशीद आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बावन दिनों चलने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा के अब महज 9 दिन शेष रह गए हैं। प्रेस्तावो मौसम के बारे में आपको सूचित कर दूं कि पहलगाम से श्री अमरनाथ की गुफा तक यात्रा के रास्ते पर आज भी मौसम मजमूई तौर पर अबरारुद है, जबकि मुख्तलिफ मकाम पर वक्त से हल्की से दरमियाना बारिश और

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का यह विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz के अलावा FM पहलगाम 100.1 MHz और इसके अलावा आप हमें सुन पा रहे हैं DTH के विभिन्न सर्विसेज, आकाशवाणी के आराधना चैनल तथा वेव्स OTT प्लेटफॉर्म और न्यूज ऑन AIR की मोबाइल ऐप पर। श्रोताओं, श्रावण मास अपने साथ कई पवित्र पर्व और त्योहार लेकर आता है। हिंदू धर्म में इस महीने को भक्ति आस्था का विशेष समय माना जाता है। श्रावण के दौरान भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है और श्रावण के सोमवार का अपना अलग महत्व है। भक्त व्रत रखते हैं, मंदिरों में जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं और भगवान शिव से सुख, शांति और परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करते हैं। इसी दौरान नाग पंचमी का पवित्र पर्व भी मनाया जाता है। ये पर्व प्रकृति के प्रति सम्मान और दया का संदेश देता है। श्रावण के बाद आने वाले पवित्र त्योहारों की कड़ी में रक्षाबंधन भी विशेष स्थान रखता है।

पर्व भाई बहन का प्रेम, विश्वास और एक दूसरे के प्रति स्नेह का प्रतीक हैं। श्रावण के समय हमें ये भी याद आता है कि त्योहारों की असली सुंदरता सिर्फ परंपराओं में नहीं बल्कि उनके पीछे छुपे अच्छे विचारों में है। भक्ति के साथ सेवा, दया, प्रेम और प्रकृति के प्रति सम्मान, ये सब श्रावण का संदेश है।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
0: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्टपेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्रीपेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा।

0: श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़ के अलावा एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और इसके अलावा आप हमें सुन पा रहे हैं डीटीएच के विभिन्न सर्विसेज, आकाशवाणी आराधना चैनल, वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म तथा न्यूज ऑन एआईआर की मोबाइल ऐप पर। श्रोताओं, श्रावण के महीने में बारिश की बूंदों के साथ जब धरती हरी भरी हो उठती है तो श्रावण का प्राकृतिक सौंदर्य भी मन को एक अलग शांति देता है। इसलिए श्रावण मास को आस्था और प्राकृति दोनों के सुंदर संगम का महीना कहा जाता है। तो आइए इस पवित्र महीने में हम अपने मन में अच्छे विचारों को जगा दें, एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान रखें और अपने जीवन में शांति और सद्भाव को बढ़ावा दें। श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं। आइए अब सुनते हैं बाल दल में रिकॉर्ड की गई आरती।
1: सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी शिव भक्तों का बाबा बर्फानी जी के इस पावन पवित्र अद्भुत धाम में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आप सभी शिव भक्त बड़े ही पुण्य कर्मी हैं, जो आप सभी आज प्रातःकालीन आरती के दर्शन कर रहे हैं। MH1 चैनल के माध्यम से जो भक्तजन देश एवं विदेश में बाबा जी की इस पावन आरती की दर्शन कर रहे हैं, वह भी बड़े ही पुण्यकर्मी हैं। प्रिय बंधुओं, ये जो धाम है, ये त्याग का प्रतीक है। इस धाम में जब बाबा बर्फानी जी ने मां पार्वती जी को अमर कथा सुनाई थी, तो उससे पहले उन्होंने अपने मार्ग में अपनी सभी जो जैसे अपने गण, अपना श्रृंगार इत्यादि सभी का अपने मार्ग में ही त्याग कर दिया। इसलिए प्रिय बंधुओं, आप भी इस त्याग को अपने जीवन में धारण करें, क्योंकि ये जो त्याग है, इस त्याग से ही आप बाबा बर्फानी से जो मिल सकते हैं। इसलिए प्रिय बंधुओं, हमारे शास्त्र कहते हैं, ईर्षि गृणी ना संतुष्टा, क्रोधो नित्य शंकिता, पर भाग्योपजीवीषु खड़ एते नित्य दुखिता। जो लोग दूसरे से घृणा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, वो कभी भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपने इस धाम में आकर कुछ सीखना है, तो यही सीखना है, हमने त्याग क्या करना है, हमने अपने अंदर की ईर्ष्या का त्याग करना है, घृणा का त्याग करना है, हमें अपने जीवन में संतोष धारण करना है। ईर्षि गृणी ना संतुष्टा, क्रोधो नित्य शंकिता, और अपने अंदर के अपने भीतर के क्रोध का त्याग करना है। जो क्रोध है, यही जो क्रोध है, ये हमारे और बाबा के बीच में जो दीवार है, इसलिए इस क्रोध का त्याग करें। ईर्षि गृणी ना संतुष्टा, क्रोधो नित्य शंकिता, और हर बात पर शंका जो है वो भी परमात्मा

के साथ मिलन में एक वादा है, इसलिए हमें हर बात पर कभी भी शंका नहीं करनी चाहिए। ईर्षि गृणी ना संतुष्टा क्रोधो नित्य शंकिता पर भाग्योपजीवीषु, और हमें कभी भी दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें अपने जो हम जीवन में हम कर्म करते हैं उनके आधार पर ही हमें अपने जीवन का जापन करना चाहिए। प्रिय बंधुओं, इस धाम में हमें यही सीखना है, हमें ईर्ष्या करनी है तो अपने अंदर की बुराई से करनी है, घृणा करनी है तो अपने अंदर की बुराई से करनी है। हमें अगर संतोष हमारे अंदर नहीं है तो किस चीज का नहीं होना चाहिए? परमात्मा से प्रेम का हमें संतोष नहीं होना चाहिए। और घृणा करनी है तो बुराई से, क्रोध से। प्रिय बंधुओं, इन सभी बातों को अपने जीवन में धारण करते हुए आज प्रातःकालीन आरती में प्रवेश करते हैं। बोलिए शंकर।

भोले बाबा स्तुतियों से, भजनों से बड़े ही प्रसन्न होते हैं। तो आप सभी भक्तजन, आज भोले बाबा ने हमें अवसर दिया है, तो दोनों हाथों से ताली का वादन करते हुए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए भोले बाबा के सुंदर भजन का ध्यान करेंगे। बोलिए।

0: शंकर भगवान की
1: जय।
0: धर्म के
1: जय हो,
0: अधर्म का
1: नाश हो,
0: प्राणियों में
1: सद्भावना हो,
0: विश्व का
1: कल्याण हो,
0: गौ माता की
1: जय हो,
0: मात पिता की
1: जय हो,
0: गुरु जनों की
1: जय हो,
0: सभी संतों की
1: जय।

0: जय हो,
1: सत्य सनातन धर्म की
0: जय हो,
1: आज के आनंद की
0: जय हो,
1: भारत माता की
0: जय हो,
1: शंकर भगवान की
0: जय हो,
1: शंकर भगवान के परिवार की
0: जय हो,
1: शंकर भगवान के गणों की
0: जय हो,
1: शंकर भगवान के भक्तों की
0: जय हो,
1: अमरनाथ स्वामी की
0: जय हो,
1: बाबा बरफाने की
0: जय हो,
1: पार्वती पते
0: हर हर हर महादेव। शिव शंभु ओम निरावलंबस्य ममावलंबम विभाजिताजे विभत् कदम्बम मदीय पापाचलपादजम् प्रवर्तताम् वाचि सदैव बम बम महादेव।

0: कन्या की जय। सभी भक्तजन आरती आपको बाहर गेट के मिलेगी। बोलिए शंकर भगवान की।
1: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz के अलावा FM पहलगाम 100.1 MHz पर, और इसके अलावा आप हमें सुन पा रहे हैं DTH के विभिन्न सर्विसेज, आकाशवाणी आराधना चैनल, वेव्स OTT प्लेटफॉर्म तथा न्यूज ऑन AIR की मोबाइल ऐप पर। श्रोताओं, इसी के साथ आज के श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण को हम यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है कि इस विशेष प्रसारण के जरिए आपको श्री अमरनाथ जी यात्रा से जुड़ी जानकारियों के साथ साथ इस पवित्र यात्रा की आस्था से जुड़ने का अवसर मिला होगा। मैं अनिका उद्घोषिका आपसे विदा लेती हूँ। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। शुभ रात्रि।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

अब प्रसंग कुछ इस प्रकार से है। उधर अयोध्या से बारात प्रस्थान के पश्चात महिलाएं स्वांग रचाकर विभिन्न भेष धारण कर नक्टा प्रस्तुत करती हैं।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

जनकपुर से चारों बेटे बहुओं की बारात लौटने के पश्चात परिछन करने के लिए तीनों रानियां पारंपरिक रीति से गीत गाकर हंसी खुशी परिछन करती हैं।

इधर मंथरा को खुशी रास न आई और कैकेयी के कान में फुसफुसा कर भवन में षड्यंत्र रचती हैं और कैकेयी राजा दशरथ जी से लिए हुए तीन वचन मांग लेती हैं, जिस कारण अयोध्या में गाज गिर जाती है और राजा दशरथ विलाप करते हुए कुछ इस प्रकार कह उठते हैं।

उधर प्रजा में भयंकर प्रतिक्रिया होती है। लोग आपस में कानाफूसी करने लगते हैं। कुछ स्त्रियां अपनी बात साधारण जन के बीच रखती हैं।

भक्त जनों, आइए आज अपने भीतर अपनी अंतरात्मा का साक्षात्कार करें और उसी से कुछ प्रश्नोत्तर करें। प्रश्न है,

ललिता सहस्रनामना किंवा सरसनाम शे। श्रीमाता श्रीमहाराग्नी श्रीमत सिंहासनेश्वरी

एक श्री माता ललिता जी, ऐश्वरी नामा हराग्नि शोभायुक्त ए सिंहासन ऊपर विराजेला सिंहना अग्नि कुंडरूपी ज्ञान माथी उत्पन्न प्रगट थयेला देवोना कार्य माटे तत्पर साथे चरणमाना नखरूपी चंद्रना किरणों वड़े जनमानसना तमोगुण ने हरी लेनारा बन्ने चरणनी कांति प्रभाथी कमलोनी शोभाने झांकी करनारा ए ललिता देवी ने अमारा प्रणाम।

ये दुर्गा माता, सती साध्वी, भगवान शिव पर अपार प्रीति रखनारा, भवानी संसार ना बंधन माती मुक्त करनारा, आर्या दुर्गा जय अपावनारा, आद्या त्रिनेत्रा त्रिशूल धारिणी दुर्गा देवी ने अमे प्रणाम करिए।

अर्थात शरद ऋतुना चंद्रना किरणो अमना जेवी उज्ज्वल कांतीवाळा उत्तम रत्नो जमा जळ्या छे ते मकराकृती कुंडल तथा हार वगैरे आभूषणो थी शोभता दिव्य आयुधो थी ओपता दिव्य नील रंगना हजारो हाथ वाला लाल कमल जेवा चरणों वाला परमेश्वरी श्री माताजी नू हूँ प्रातःकाले स्मरण करूँ छू नमन करूँ छू।

अथवा देवी सायुज्यम अप्नुते। भगवती अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका दिव्य देवी भगवती चंडिका देवी नी दुर्गा देवी नी स्तुति ना आ श्लोको मुझे पाठ करे शे।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।